0: वंदे मातरम।
1: मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 5:56 हुए हैं। आज है शुक्रवार, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून 2026। इस समय सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसका अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: The discussions also.
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन के विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण अभी किया जा रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
4: हे ईश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये निवेदन उन वाणियों में से है जिन्हें यीशु मसीह ने क्रूस पर भारी पीड़ा सहते हुए कहे थे। मनुष्य का जीवन अज्ञानता, बुराई से जूझते और उनका निष्पादन करते हुए बीतता है। मनुष्य जानबूझकर भी अपने जीवन में वे गलतियां करता जाता है जिनके बारे में यदि खुद पर सहने को आए तो कभी न करे। पर जब देखता है, जानता है कि उससे उसे कोई हानि नहीं बल्कि दूसरों को हानि पहुंचाकर लाभ कमाया जा सकता है, करता जाता है। इस स्थिति में बुराई और पाप के दलदल में धंसता चला जाता है। जिस समय प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उन पर कई तरह के अभियोग लगाए गए, उन्हें सताया गया, दंडित किया गया, और ये सब किया तत्कालीन समर्थ लोगों ने, जो ये नहीं जानते थे कि उनके द्वारा चलाए जा रहे स्वार्थ और नैतिक दृष्टि से बुरे कामों को भूलकर लोग सर्वहित कल्याण के कार्यों पर अपना ध्यान लगाएं। वर्तमान समय को यदि निहारे तो समय अब और बुरा हो गया है। हर व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है। शक्तिशाली और संपन्न व्यक्ति सोचता है कि इस दुनिया में निर्बलता और अज्ञानता बनी रहे ताकि उनकी संप्रभुता कायम रहे। लोग अपनी इच्छाओं के लिए दूसरों के रक्त के प्यासे रहे। मनुष्य चिंतनशील प्राणी है पर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए चिंतन करना नहीं जानता, अपने हित को साधने के लिए सर्वहित नहीं जानता। दैवीय शक्ति से पूर्ण अनेक महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म ही इसलिए लिया कि सब जगह शांति हो, प्रेम का साम्राज्य हो, सबका कल्याण हो, सृष्टि से पाप और बुराई का नाश हो, सबका हित हो। यह सृष्टि ईश्वर की सोच की अनमोल रचना है। इसका आधिपत्य ईश्वर ने मनुष्य के हाथों में दिया है, किंतु मनुष्य मनुष्यता से परे होता जा रहा है। प्रभु ईसा मसीह ने मनुष्य के उद्धार के लिए अपना जीवन दे दिया। पाप की मजदूरी मृत्यु है के बोलों से मनुष्य को जोड़ने का प्रयास किया। ईश्वर ने जगत से और उसमें रहने वालों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो पाप और बुराई में न पड़े और अनंत जीवन पाए। ईसा मसीह ने अपने संदेश और उपदेशों में प्रेम की परिभाषा को समझने और उसे अमल लाने पर विशेष बल दिया। त्याग और समर्पण को जीवंत जीने का मूल मंत्र माना और कहा भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, किसी वस्तु की लालच न कर, अपना ध्यान नेक कामों पर लगा, किसी की बुराई न कर। आज जरूरत है इन संदेशों को मनुष्य मनुष्य के बीच प्रचारित करने की, समझाने की। बड़ा होना अच्छा है मगर बड़प्पन तभी है जब हम सबको साथ लेकर चलें। शिक्षा वही अच्छी है जिससे व्यक्ति का नैतिक विकास हो, सबका कल्याण हो। ईसा मसीह का क्रूस पर बलिदान उन सब लोगों के लिए है जो पाप, घृणा, ईर्ष्या, बुराई से मन फिराकर प्रेम को अपनाने के लिए आगे आना चाहते हैं। क्रूस का बलिदान संसार की लंबी आयु के लिए है ताकि ये संसार और उसमें रहने वाले लोग दो चार नहीं वरन 100 गुना प्रेम का फल लाए और इस संसार में प्रेम के बीज को अंकुरित करें। आज चिंतन इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं को जाने, पहचाने, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसी और चीज को हानि न पहुंचाए। व्यक्ति का अस्तित्व सिर्फ व्यक्ति से नहीं है वरन उन सब चीजों से है जो मिलकर संसार, सृष्टि और प्राणी नाम देते हैं, क्योंकि कभी भी कोई एक वस्तु अपने आप में पूर्ण नहीं होती। पूर्णता के लिए सहारे की जरूरत तो पड़ती ही है। जिस तरह बीज को अंकुरित होने से लेकर पूरा पेड़ बनने तक के लिए मिट्टी, पानी, धूप और देखभाल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त करने के लिए शिक्षा, विकास, उद्देश्य और सहारे की जरूरत होती है। और तभी मनुष्यता कायम रह सकती है।
5: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
3: इस संदेश के साथ ही कार्यक्रम चिंतन अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मीराबाई की रचना को। स्वर शुक्ला शर्मा का है और संगीत निर्देशन है बालकृष्ण शर्मा का।

0: विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
6: देश की सुरीली धड़कन
7: विविध भारती,
5: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
6: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
5: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
6: वीर सैनिकों की जय माला
5: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
6: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
8: सखी सहेली,
6: बॉम्बे टॉकीज और
9: सेल्यूलॉइड के सितारे,
6: हम क्या कहें आपको, याद सब है जरा जरा,
10: मुझे याद सब है जरा जरा,
5: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
6: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
5: मन का सुकून दिल की आरती
6: सुरीली संदली।
4: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
11: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
11: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
11: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
12: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: मीराबाई की रचना को अभी आप सुन रहे थे शुक्ला शर्मा के स्वर में। संगीत निर्देशन था बाल कृष्ण शर्मा का। इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कृषि संबंधी जानकारी कार्यक्रम कृषि चर्चा में, जिसमें आज चर्चा का विषय है फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जी आर राठिया, सहायक प्राध्यापक मृदा विज्ञान कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र बोईर दादर रायगढ़।
1: राम राम कृषक भाइयों, आज आप लोग को मैं क्या बोलते हैं मुख्य पोषक तत्व सुने होंगे आप लोग, लेकिन मुख्य पोषक तत्व के अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी महत्व, इसकी कमी के लक्षण कैसे पौधे में पहचानेंगे इसके बारे में चर्चा करूंगा। जैसे क्या बोलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, ये मुख्य आता है, इनको ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिंक है, बोरान है, आयरन है, मैग्नीज है, कापर है, मॉलिब्डेनम है, इनकी क्या बोलते हैं एक एक करके मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। जैसे ये क्या बोलते हैं आयरन के लिए है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट हम उपयोग करते हैं, ये आसानी से ग्रहण कर लेता है पौधा सोल्यूशन फॉर्म में। और इसके लिए क्या बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं आसानी से प्राप्त अकार्बनिक स्रोत में जैसे कि साल्ट रूफ है, सोडियम बोरेट है, सोडियम मॉलिब्डेट है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। मंद अकार्बनिक स्रोत के रूप में वी एस धातु मिश्र आता है, जैसे आपका क्या बोलते हैं बोरेक्स है बोरान के लिए, और कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, फेरिक सल्फेट है, ये सब रासायनिक रूप है, इनको उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं बात आती है कि इसको हमको भूमि में कब अप्लाई करें, ये भी जानना जरूरी है। जैसे कि सल्फर है, जिंक है, कॉपर है, इसको हमको भूमि में अप्लाई करना प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा बोरान है, बोरान को हमको भूमि में या फिर जो पानी छिड़काव पत्ता में छिड़काव करना चाहिए। और आयरन है, मैग्नीज है, इसको हमको इसको भी पत्ता में छिड़काव करना प्रेफर करना चाहिए सोयल की अपेक्षा। और मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम भी एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व है, इसको हमको बीज उपचार के रूप में उपयोग कर सकते हैं या फिर क्या बोलते हैं ये पत्ती छिड़काव में। तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं ये जो सभी सूक्ष्म पोषक तत्व है इस प्रकार से हमको भूमि में या पत्ती छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे पेस्ट बना के भी हमको इसको उपयोग कर सकते हैं, या फिर मिट्टी में क्या बोलते हैं लई बना के इसको उपयोग कर सकते हैं। इसको हमको पौधा की जब यंगर अवस्था है उसमें क्या बोलते हैं थोड़ा सा अप्लाई कम करना चाहिए, जब मेच्योर पौधा उसमें अप्लाई की मात्रा उसको कंसंट्रेशन ज्यादा रख सकते हैं। अगर यंगर है पौधा, यंग है, तो उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन जानेंगे तो उसको जलने की संभावना रहती है। तो ये सब बात को हमको पौधा की अवस्था के बारे में जानना है। लोहा के क्या बोलते हैं कमी के लक्षण छोटी अवस्था में प्रकट होती है, एक इसमें जो हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं क्लोरोफिल के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इसका जो लक्षण है पत्ती की जो सीरा होती है, जो नस होती है, वहां पास हरापन गायब हो जाता है और अग्रभाग जो मृत्यु हो जाता है, जैसे टमाटर में अधिक ये दिखता है। या धान की फसल की बात करें तो नर्सरी अवस्था में आयरन की कमी के लक्षण ऊपरी की पत्ती में पीलापन पड़ने लगता है, ठीक है। पीलापन पड़ने के बाद सफेद होने प्रकट हो जाता है। तो इस समय हमको अगर उर्वरक को छिड़काव करते हैं तो उसके हमको कमी आयरन की जो कमी है लोहा कमी उसको दूर कर सकते हैं। इसके लिए फेरस सल्फेट 0.2 से 0.3% का उपयोग करना चाहिए, या फिर हमको क्या बोलते हैं 200 से 300 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है मैग्नीज है, मैग्नीज का कार्य है जो हमारा एंजाइम है, एंजाइम का क्या बोलते हैं सक्रियता को बढ़ाता है। इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण है उसको भी बढ़ाता है और क्या बोलते हैं पौधों में चमक लाता है। इसके कमी के लक्षण पहचाने का तरीका है कि जो नई पत्ती है उसमें जो हल्का हरापन क्या बोलते हैं नोक का जो हरापन है वो गायब होता है, और सीरा के बीच में क्या बोलते हैं पीला दिखाई देता है, और बीच बीच में टिश्यू है जो ऊतक मर जाता है, और धान में फसल खास करके जो भूरापन दिखाई देता है। इस प्रकार से हम देखें तो जो सब्जी वर्गीय फसल है, आलू है, टमाटर है, पालक है, पत्ता गोभी है, सेम है, इसमें जो ऊतक है उसका वो गलना प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा जिंक है, जिंक की बात करें तो धान में खैरा होती है और पूरा कत्थाई कलर दिखाई देने लगता है। इसके लिए हमको रोपाई के समय 20 से 25 दिन बाद सामान्यता प्रकट होती है, उस समय हमको 5 ग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 ग्राम चूना प्रति लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए।
2: राम राम कृषक। भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: इस संदेश के साथ ही कार्यक्रम कृषि चर्चा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब आइए हम आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य एवं शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम विवरण में। अब से कुछ ही पलों बाद यानी 6:40 पर सुनिएगा रामचरितमानस का भाग 33। 6:50 का समय होगा कार्यक्रम देशगान का। चित्रपट संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 7:05 पर। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा का प्रसारण समय होगा 7:35 का। कार्यक्रम गांधी चर्चा हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 7:45 पर। 8:00 समाचार प्रभात व 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम इनसे मिलिए, इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से सुबह 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं सुबह 9:00 से, अपराह्न 12:00 से, सुबह 11:00 से और रात्रि 9:00 से। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण किया जाएगा सुबह 9:55 पर और 11:55 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

0: कार्यक्रम सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 10:10 पर। आपके पत्रों व ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमारे हाथी अमर गोट का प्रसारण समय होगा शाम 5:00 का। कार्यक्रम भजन संध्या का आनंद लीजिएगा शाम 5:10 पर। चित्रपट संगीत 5:30 पर। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का समय होगा, इसका पहला भाग सुनिएगा शाम 6:20 पर और दूसरा भाग सुनिएगा शाम 7:00 से। कृषकों का कार्यक्रम चौपाल का समय होगा 7:20 का, जिसमें आज की बात का विषय होगा इस साल के पशुपालन कार्य। इसके साथ ही आज की नसीहत के अंतर्गत सुनिएगा सुरक्षित भंडारण कर अनाज को कीटों एवं चूहों से बचाएं। इसके साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत का समय होगा रात्रि 8:20 का। फिल्म संगीत रात्रि 8:30 पर। विविध संगीत रात्रि 10:00 और फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10:30 पर।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर। स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण संबंधी जानकारी हम आपके लिए पुनः लेकर आएंगे आज सुबह 7:55 पर, सुबह 10:00, शाम 5:05 पर और शाम 6:05 पर। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है तुलसीदास कृत रामचरितमानस का भाग 33। गायक कलाकार हैं शिप्रा बोस और रामकिशन चंदेश्री। संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

शिव का वरण करने के पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थी। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरो, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती, परंतु अब तो शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूँ, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हठ रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। शिव जी के लिए पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर ज्ञानी मुनिगण उनकी जय जयकार कर उठे। बोले, हे माते, आप माया हैं और शिव कल्याणकारी भगवान, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऋषिगण ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती के पास भेजा, जो विनती करके उन्हें घर ले आए। उधर भगवान शंकर के पास जाकर ऋषियों ने पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन सुनाया, जिससे भगवान शिव आनंद

तुलसीदास कृत रामचरितमानस का भाग 33 अभी आप सुन रहे थे। गायक कलाकार थे शिप्रा बोस और रामकिशन चंदेजी व संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। इसके साथ ही मानस गान अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है समूह स्वर में कार्यक्रम देशगान। रचना श्यामलाल प्रसाद की है।

समूह स्वर में कार्यक्रम देशगान अभी आप सुन रहे थे। रचना श्यामलाल प्रसाद की थी। इसके साथ ही कार्यक्रम देशगान अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी से के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों का अनुप्रसारण अभी हो रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और आप सभी को मेरा यानी आपकी दोस्त और होस्ट रजनी का प्यार भरा नमस्कार है। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है क्या यही प्यार है। आवाजें अलका याग्निक और बाबू सुप्रियो की है। गीत लिखा जलीश राशिद ने और संगीत है अल्लू अरविंद का। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गाना।

0: आकाशवाणी F90।
1: मैं हूं हरीश और मैं आज आप सबके बीच अपनी खुशी साझा करने आया हूं। भारत में रेडियो प्रसारण को 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह सुनते ही मेरा मन गर्व से भर जाता है। हृदय की गहराइयों से आकाशवाणी रायगढ़ को बहुत बहुत बधाई। सोचिए, 90 साल पहले जब रेडियो ने पहली बार आवाज दी थी, तब न तो टेलीविजन था, न मोबाइल, न इंटरनेट। उस दिन से लेकर आज तक रेडियो ने हर सुबह की शुरुआत की, हर त्योहार की रौनक बढ़ाई, हर आपदा में राहत का पैगाम दिया। यह सिर्फ एक प्रसारण माध्यम नहीं, बल्कि हर भारतीय की जिंदगी का एक सच्चा साथी रहा है। 90 वर्ष यानी लगभग 90 बरस, इतने लंबे समय तक बिना किसी थके, बिना किसी रुके लोगों के बीच बने रहना, यह बहुत बड़ी बात है। कभी आजादी की लड़ाई के संदेश, कभी सीमा पार वीर जवानों की हौसला अफजाई, तो कभी छत्तीसगढ़ की माटी के लोकगीत। रेडियो ने हमें सिखाया कि सच्ची ताकत आवाज में होती है, दिखावे में नहीं। एक बार फिर से बधाई। जय हिंद।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंध

संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का बहुत ही प्यारा गीत अभी आप सुन रहे थे। कुमार सानू, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत था जतिन ललित का। ऐसे ही बहुत ही प्यारे प्यारे गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। और कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं डुप्लीकेट फिल्म के ये बहुत ही प्यारे से गाने के साथ। आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की है, गीत लिखा

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी।

बाजीगर इस फिल्म का बहुत ही प्यारा गीत अभी आप सुन रहे थे विनोद राठौड़ के स्वर में। गीतिका रानी मलिक ने और संगीत था अनु मलिक का। इस गीत के साथ ही फिल्मी गानों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 7:35 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।

नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा में। मित्रों, पेड़ पौधे प्रकृति की अमूल्य देन हैं। वे हमें शुद्ध वायु, छाया, फल, औषधियाँ और वर्षा प्रदान करते हैं। बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसे में वृक्षारोपण सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। आज पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण पेड़ों की कटाई और इनकी संख्या में कमी है। एक पेड़ अपने जीवन काल में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है। अगर हर व्यक्ति साल में कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करें तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उनके नियमित देखभाल भी आवश्यक है। जब पौधे बड़े होकर वृक्ष बनेंगे तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित और संतुलित रहेगा। वृक्षारोपण हमारे जीवन और पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो जीवन के लिए जरूरी है। वृक्ष वायु प्रदूषण को कम करते हैं और ये हानिकारक गैसों को अवशोषित कर वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। दोस्तों, वृक्ष तापमान को नियंत्रित करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मददगार हैं। यानी वृक्ष जलवायु संतुलित रखते हैं, पेड़ जल चक्र को भी संतुलित रखते हैं जिससे वर्षा में सहायता मिलती है। मिट्टी संरक्षण में भी ये मददगार हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं और अनेक पक्षी और वन्य जीव जंतुओं का आश्रय होते हैं। जंगल और वृक्ष फल फूल लकड़ी और औषधियों व इस तरह की मानव जीवन की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वृक्ष। वृक्ष प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाते हैं और स्वच्छ वातावरण प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण का संरक्षण ही मानवता का संरक्षण है। वृक्ष धरती का आभूषण है और जीवन का आधार। वृक्षारोपण करें, पर्यावरण बचाएं और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं हरित पृथ्वी उपहार में दें। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं ये गाना।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर। इस संदेश के साथ ही प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी जी के अप्रकाशित लेख सत्याग्रह आश्रम का इतिहास में से आज प्रस्तुत है अहिंसा पर लिखे उद्धरण का एक अंश।
1: कहा जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा परेशानी शायद अहिंसा पालन के बारे में हुई है। सत्य की पहेलियां बनी ही रहती है, प्रार्थना हृदय में नहीं उतरती, मगर ये दोनों क्या है यह समझने में बहुत मुश्किल नहीं पड़ती। अहिंसा को समझने में ही दम निकल जाता है। जितनी चर्चा अहिंसा की हुई है उतनी आश्रम में और किसी विषय की नहीं हुई होगी। जो अमुक काम किया गया वह हिंसा है या अहिंसा, यह सवाल आश्रम में उठा ही करता है। और बहुत बार हिंसा अहिंसा का भेद जानते हुए भी अहिंसा का पालन नहीं किया जा सकता। पालन करने में अक्सर हमारी कमजोरी आड़े आती है। यह कमजोरी भी ऐसी नहीं होती जो आसानी से दूर की जा सके। मन वचन और शरीर से किसी को भी दुख न देना, अपना या दूसरे का भला मानकर भी किसी जीव को दुख न देना अहिंसा है। इस पर पूरी तरह अमल करना देहधारी के लिए असंभव है। वह एक सांस लेने में ही अनेक सूक्ष्म जीवों की हिंसा करता है। जो जीव आंख पर बैठना चाहते हैं आंख झपकाने में उनकी हिंसा होती है। खेती करने में अनेक छोटे बड़े जीवों की हिंसा होती है। सांप बिच्छू काटेंगे इस डर से उन्हें हम मारते नहीं, पर पकड़कर दूर तो जरूर छोड़ आते हैं। पकड़ने में उन्हें थोड़ा दुख तो होता ही है, भले उसे अनिवार्य समझा जाए, मगर इस व्याख्या के अनुसार वह हिंसा तो है ही। मैं जो खाता हूं, जो जगह रोकता हूं, जो कपड़े पहनता हूं, उसमें से यदि कुछ बचा लेता हूं तो यह स्पष्ट है कि मुझसे जिन्हें ज्यादा जरूरत है उन गरीबों के वे काम आए। मेरे स्वार्थ के कारण उन्हें ये चीजें नहीं मिल पाती, इसलिए मेरे भोग से मेरे कंगाल पड़ोसी की हिंसा होती है। जीने के लिए मैं कई तरह की वनस्पति खाता हूं, उसमें वनस्पति जीवन की हिंसा है। इस व्यापक हिंसा में पड़ा हुआ मैं किस तरह अहिंसा का पालन करूं? पग पग पर नई समस्याएं खड़ी होने वाली ही हैं। ये हिंसा तो ऐसी है जो समझ में आ सकती है, मगर हम एक दूसरे से जो सूक्ष्म द्वेष करते हैं उसका क्या?

शिक्षक लड़कों को मारे, माँ बच्चों को डांटे, बराबरी वाले लोग कभी कभी एक दूसरे को लाल आंखें दिखाएं, यह सब हिंसा ही है और बहुत बुरी हिंसा है। इसका ठीक उपाय नहीं मिलता। जहां राग द्वेष है वहां हिंसा है ही। यह हिंसा कैसे मिटे? इसलिए पहले तो हम आश्रम में यह सीख लेते हैं कि देश और कुटुंब या अपने लिए किसी का सिर धड़ से उड़ा देना तो हिंसा है ही, मगर क्रोधादि से रोज होने वाली सूक्ष्म हिंसा इस स्थूल हिंसा से शायद अधिक खराब है। अलग हिसाब लगाएं तो दुनिया में जो रोज खून होते हैं उनकी संख्या काफी जान पड़ेगी, पर दुनिया की आबादी के प्रमाण में जो मौतें और तरह से होती हैं उनसे तुलना करने पर इन खूनों की संख्या नाम मात्र की मालूम होगी। मगर क्रोध वगैरह से रोज होने वाली सूक्ष्म हिंसा का तो अंदाजा ही नहीं लग सकता।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: इस संदेश के साथ ही कार्यक्रम गांधी चर्चा संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 7:55 हुए हैं। अब आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य एवं शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में। अब से कुछ पलों बाद यानी 8:00 समाचार प्रभात व 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। वह इसके ठीक पश्चात यानी कि 8:30 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम रिले करेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए। विविध भारती कार्यक्रम जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, आप सुन सकते हैं सुबह 9:00 से, सुबह 11:00 से, अपराह्न 12:00 से और रात्रि 9:00 से 10:00 तक। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से किया जाएगा सुबह 9:55 पर और 11:55 पर। कार्यक्रम सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा 10:10 पर, आपकी फरमाइश 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमराथी अमर गोट का समय होगा 5:00 का। कार्यक्रम भजन संध्या का आनंद ले सकेंगे 5:10 पर। चित्रपट संगीत 5:30 पर। फिल्मी गानों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का पहला भाग आप सुनेंगे 6:20 पर और 7:00 से। कृषकों का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण समय होगा 7:20 का, जिसमें आज की बात का विषय होगा इस साल के पशुपालन कार्य। इसके साथ ही आज की नसीहत के अंतर्गत सुनेगा सुरक्षित भंडारण कर अनाज को कीटों एवं चूहों से बचाएं। इसके साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत का समय होगा रात्रि 8:20 का। फिल्म संगीत रात्रि 8:30 पर। विविध संगीत का आनंद ले सकेंगे रात्रि 10:00 और फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10:30 पर। स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण संबंधी जानकारी अभी आप सुन रहे हैं FM 100.7 MHz पर।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण संबंधी जानकारी हम आपके लिए पुनः लेकर आएंगे सुबह 10 बजे और सांध्यकालीन प्रसारण सभा में शाम 5:05 पर और 6:05 पर। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को है 8 बजे समाचार प्रभात व 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सिंह कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
4: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
4: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: स्वच्छ भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रास्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भाव।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
6: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है आकर्षिता सिंह।
7: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीनी सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under-18 Asia Cup hockey tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
9: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the 4-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej, and Sarigam GIDC modern power distribution upgrades in Valsar. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
8: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yog and promote healthier lifestyles across communities.
10: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
8: The Prime Minister said the championship represented more than a sporting competition and offered an opportunity to spread the broader message of yog worldwide.
10: योगासन स्पोर्ट्स का एक और पक्ष है। हम जानते हैं कि हर बड़ा स्पोर्ट अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आता है। ये रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। इसलिए जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा, वैसे वैसे इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यह ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवेंट मैनेजर्स के लिए भी नए अवसर बनाएगा।
8: Reserve Bank of India, RBI, will announce its bi-monthly monetary policy today. RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the decisions made by the Monetary Policy Committee at 10 a.m. in Mumbai. The six-member MPC started its three-day deliberations on Wednesday. In April, the Reserve Bank had kept its key policy rate unchanged. Here is more from our correspondent.
4: The government has set consumer price index plus inflation target at 4% with upper tolerance of 6% and the lower tolerance level of 2% for the central bank. The CPI rose slightly to 3.48% in April, mainly due to higher prices of gold and silver jewelry as well as some kitchen items. As the CPI is within the tolerance level, economists are expecting that the key interest rate will be kept unchanged at 5.25%. It also says that the central bank will adopt a cautious approach in view of West Asia conflict posing challenges for the inflation as well as economic growth. Jivan Bhavsar, Akashwani News, Mumbai.
8: Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passed away in New Delhi yesterday following a prolonged illness. Dr. Kashyap was part of the high-level committee headed by former President Ramnath Kovind to prepare a legal framework on simultaneous elections. Author of over 100 books, he served as the Secretary General of Lok Sabha from 1983 to 1990. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the passing of Dr. Kashyap. The Appointments Committee of the Cabinet has approved a one-year extension for Tarun Kapoor, a retired 1987 batch IAS officer, as advisor to Prime Minister Narendra Modi. The Department of Personnel and Training has informed that Mr. Kapoor's extended tenure in the Prime Minister's office takes effect on the 10th of this month for a further period of 1 year. The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Neelkant Mishra as Executive Director of World Bank Headquarters, Washington, D.C. for a tenure of 3 years. The Department of Personnel and Training has informed that the tenure of Parameswaram Iyer has also been extended till the new incumbent assumes charge. The NDA Alliance in Andhra Pradesh has decided to allot 3 of the 4 vacant Rajya Sabha seats to the Telugu Desam Party TDP and 1 seat to the Janasena Party. The decision was announced by Chief Minister N. Chandrababu Naidu after a meeting of NDA Alliance partners held at its camp office in Amaravati the previous night. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Russian President Vladimir Putin has hailed Moscow's strategic partnership with New Delhi and asserted that Western attempts to force India into scaling back its cooperation with Russia are futile and damaging to global stability. In an interaction with the heads of leading global news agencies, Putin lauded India's economic growth and its independent foreign policy and said Russia is determined to expand its economic engagement with the country. The Russian president said that India's diplomatic engagement with the U.S. does not hinder or undermine its time-tested relationship with Russia. He said Russia considers India as a reliable partner and it sees no negative consequences from New Delhi's bilateral relations with any other country. The Russian president also said that Russia proposed to India to work jointly on manufacturing the fifth generation Su-57 fighter jet. Putin added that his country is ready to provide India with critical technologies for major defense platforms and weapons. World Environment Day is being celebrated across the globe today. It has been observed on the 5th of June every year since 1973 as part of the United Nations Environment Program to build awareness to save life on Earth. A report.
6: The day is observed to raise global awareness to take positive environmental action to protect nature and the planet Earth. On the occasion of World Environment Day, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, and Minister of State, Kirti Vardhan Singh, will participate in a tree plantation program at Namo Oxygen Park at Maidan Gadi in the national capital under the Ek Ped Maa Ke Naam campaign. Several union ministers, chief ministers, ministers, MPs, MLAs will participate in World Environment Day events at the state level. The day raises awareness, mobilizes action and promotes environmental sustainability. Through campaigns, events and initiatives, the day inspires individuals and communities to make changes, fostering a sense of urgency and addressing environmental challenges for a sustainable future. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
8: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has extended greetings to the citizens on World Environment Day. In a social media post, Dr. Jaishankar encouraged everyone to work towards a greener, cleaner and more sustainable future. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav also urged the countrymen to renew their pledge to remain inspired by nature for the climate and future. Union Minister Dr. Jitendra Singh will inaugurate two-day lavender festival at Bhadarwa in Jammu and Kashmir tomorrow under the theme Lavender Goes Global. The fourth Lavender Festival is being held at Government Degree College, Bhadarwa in Dora district on June 6 and 7. The festival will witness enthusiastic participation of scientists, startups, aroma industries, entrepreneurs, policymakers, agribusiness stakeholders, students, progressive farmers and representatives of fragrance and wellness companies from across the country. A two-day national workshop on seafood exports will begin in Visakhapatnam today to discuss ways to increase India's seafood exports and strengthen the sector across the country. The workshop will focus on improving seafood exports through better infrastructure, value addition, certification, traceability and policy support. Discussions will also be held on increasing the participation of startups and small businesses in the export sector. The India Meteorological Department has issued an orange alert for thunder squall conditions today over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Jammu and Kashmir, Ladakh, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Uttar Pradesh. Heavy to very heavy rainfall is expected during the day in places over coastal Karnataka, Kerala and Mahe, north interior Karnataka and Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. Parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Andaman and Nicobar Islands, Tripura and Andhra Pradesh are also likely to experience rainfall today. According to the Met Department, Arunachal Pradesh is expected to witness thunderstorms and lightning today. Moving on to sports, India will take on arch-rivals Pakistan in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament at Kakamegahara Hockey Stadium in Japan today. In the Women's Under-18 Asia Cup, India progressed to the semi-finals after remaining unbeaten in the group stage and will face China today. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
11: Thank you, Naresh. On its front page under the headline Push for India-Venezuela Ties, Hindustan Times carries a picture of Prime Minister Narendra Modi and Venezuela's acting president Delcy Rodriguez. The paper says the two leaders held talks on forging a long-term energy partnership and collaboration in pharmaceuticals and critical minerals. India-Venezuela vow deeper energy ties, writes the Tribune. As a court sent Lokesh Bajaj, owner of the hotel where 21 people were killed in a devastating fire, to police custody, the Delhi government said it would withdraw its bed and breakfast policy, reports the Pioneer. A picture on its front page shows family members at the last rites of the victims of the fire under the headline, Eight Fires, One Broken Family. Still seething with anger at the Congress ditching it and switching over to the TVK immediately after the Tamil Nadu Assembly elections, the DMK announced its decision to boycott the INDIA block meeting slated for the 8th of June, says a top headline in the Statesman. Rebel Rita Brata's expulsion from TMC void, writes the Asian Age, quoting the West Bengal Assembly Speaker, adding that there are 61 MLAs in the rebel camp. In its editorial titled Funding India's Climate Future, a $1 trillion question, the Hindu writes that India will require roughly $2.5 trillion by 2030 to meet its nationally determined contributions. Over the longer term, the cost of achieving net zero emissions by 2070 is estimated at $10.1 trillion, nearly three times India's current GDP. And finally, in what climbers are calling a miracle, 52-year-old Sherpa guide, who was presumed dead at Mount Everest after he vanished during descent on May 29th, was found alive 6 days after base camp, reports the Times of India under the headline, Sherpa survives 6-day Everest ordeal, sans food, oxygen. And with that, it's back to you, Naresh.
8: Thank you, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasana Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
12: समाचारों का अनुप्रसारण अभी हो रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 8:30 हुए हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
13: कार्यक्रम में आज सुनते हैं पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सुनीता गुड़बुले से बातचीत, प्रस्तुत करता है रमा शंकर।

0: श्रोताओं नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं तो शहरों में कई ऐसी अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट अस्पताल होते हैं जहां आसानी से स्वास्थ्य संबंधी कोई भी आपातकालीन स्थिति के लिए सुविधा प्राप्त हो सकती है। लेकिन यही जब हम गांवों में जाते हैं तो वहां चिकित्सा संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है। ग्रामीण कुछ इलाके होते हैं जहां प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र पीएससी सीएससी जैसे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जहां आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। लेकिन कुछ ग्रामीण इलाके भारत में ऐसे हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुंचना काफी मुश्किल होता है और उन दुर्गम इलाकों में डॉक्टरों की मदद मिल पाना भी उतना ही कठिन होता है। तो श्रोताओं, अगर हम बात करें अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश की, तो हमारा छत्तीसगढ़ काफी वन आच्छादित प्रदेश है और यहाँ कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहाँ चिकित्सा सुविधाओं की पहुँचने की आज भी दरकार है। और ऐसे ही कुछ स्थानों में ऐसे लोग कार्य करते हैं जो चिकित्सा सुविधाओं को ऐसे लोगों तक पहुँचाना सुगम बनाते हैं। और कहा जाता है कि किसी के स्वास्थ्य के लिए कार्य करना काफी पुण्य का कार्य होता है। तो श्रोताओं, डॉक्टर रामचंद्र त्र्यंबक गोडबोले और सुनीता गोडबोले, जिन्हें गोडबोले दंपत्ति के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और अबूझमाड़ के आदिवासी इलाकों में ये 40 वर्षों तक निस्वार्थ चिकित्सा सेवा दे रहे हैं और इन्हें वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी इलाका है वो काफी दुर्गम है। इन्होंने मिलकर अब तक 1,00,000 से अधिक मरीजों का मुफ्त इलाज किया है। श्रोताओं, इसी सेवा के लिए इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो श्रोताओं, इनसे मिले कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनीता गोडबोले से। तो सुनीता जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार
0: जी। तो सुनीता जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में हम आपके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैं वैसे पहले पुणे में ही रहती थी, मतलब मेरा जन्म और शिक्षा पूरा सभी मेरा पुणे में हुआ। और जब मैं शिक्षा ले रही थी तभी मेरे महाविद्यालयीन जीवन ने, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये जो अखिल भारतीय संगठन है, छात्र संगठन, उससे जुड़ी थी। और उनके जो वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता और अधिकारीगण, प्रोफेसर भी उसमें रहते थे, कुछ पूर्णकालिक जो कार्यकर्ता रहते थे, उनके द्वारा जो हमको जानकारी दिया जाता था या उनके साथ जो संवाद होता था हमारा, उसके कारण हमारे मन पर ये प्रभाव पड़ा कि भाई हमें समाज के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और ऐसे समूहों के लिए करना चाहिए, ऐसे समुदायों के लिए करना चाहिए जिनको उसका, मतलब जो भी सामाजिक इसमें आगे बढ़ने के लिए जो भी मौका होना चाहिए, अवसर होना चाहिए, वो जिनको कम है और अभी भी वो थोड़े से पीछे है बाकी समाज से, ऐसे समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना चाहिए। मेरी मतलब पढ़ाई पूरी होने के बाद, मैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क हूँ, तो मास्टरी करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, तो क्यों ना मैं आदिवासी समाज में, जनजाति समुदाय में काम करूँ, इसलिए मैं इस काम में आई
0: जी। तो सुनीता जी, जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ माओवादी प्रभावित इलाकों में, तो वो विकास की राह से काफी पीछे हैं, तो वहां पर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए कितनी मुश्किल था उन इलाकों में?
1: बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम जब 1990 में हम यहाँ बारसूर जो है दंतेवाड़ा जिले का एक छोटा सा गाँव, उस समय इसकी जनसंख्या केवल 3,000 थी। आज वो नगर पंचायत बन गया है, लेकिन उस समय केवल 3,000 जनसंख्या थी। इतने छोटे से गांव में जो हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, उनके जो अधिकारी, उन्होंने हमको भेजा यहाँ पर और बताया कि भाई आप यहाँ पर अस्पताल चलाने का काम डॉक्टर गोडबोले जी करेंगे और सुनीता जो है वो महिलाओं के लिए काम करेंगी। तो इस प्रकार से हमारा काम शुरू हुआ। और तो उस समय तो यहाँ तो कुछ सुविधा ही नहीं थी, मतलब पानी और बिजली का इतना बात नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बहुत ही अनास्था थी। और कोई भी एक केवल 5वीं तक का एक स्कूल था और जो बाद में फिर एक 8वीं तक, कुछ सालों बाद 8वीं तक भी हो गया। और अस्पताल तो डॉक्टर जरूर था, लेकिन वो जो थे लोगों की यहाँ पर, मतलब कहना ऐसा था कि अरे नहीं, आश्रम के डॉक्टर भैया आ गए, बहुत अच्छा हो गया, हमको अभी दवाई अच्छा से मिलेगी। तो इसलिए आश्रम के जो, मतलब अस्पताल था जो हमारा जो था, उसका महत्व महत्व नहीं मतलब उसकी आवश्यकता ज्यादा महसूस होते गई।
0: जी, तो सुनीता जी, जब हम बात करते हैं हमारे आयुष्मान प्रदेश की और छत्तीसगढ़ के जो बस्तर संभाग की, तो वहाँ पे चिकित्सा सुविधाओं की दरकार हमेशा से रही है, और वहाँ बारिश के दिनों में हम देखें तो कोई तरह की बीमारियों का खतरा होता है, मलेरिया, डेंगू, जो खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो इस समय जब इस तरह की बीमारियां फैलती हैं, तो आप लोग उन इलाकों में कैसे पहुंच पाते हैं?
1: नहीं देखिए, हमने दो प्रकार का काम किया। शुरू में तो हमने अस्पताल चलाया जहाँ पर मरीज हमारे पास आते थे, और ज्यादातर जैसे जैसे मतलब लोगों में ये जानकारी हो गई कि आश्रम का अस्पताल फिर से शुरू हो गया है, तब वैसे वैसे बहुत 30-35 किलोमीटर दूरी से भी मरीज हमारे यहाँ आते थे। अबुझमाड़ का के द्वार पर बारसूर है, वहां से इंद्रावती पार करने के बाद तुरंत अबुझमाड़ शुरू हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से अबुझमाड़ के इलाके से बहुत सारे मरीज जो रोगी जो है हमारे पास आते थे। और इसमें ज्यादातर मरीज ये कुपोषण के और खास करके मतलब आपने जैसा कहा वो मलेरिया के, और मतलब एक कमर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ऐसा है वैसा है, ऐसे मतलब बार बार हम एक ही बीमारी को बार बार होना, जैसे मलेरिया जो बीमारी है वो बार बार होना, उस समय हमें ये मतलब टीबी के मरीज भी बहुत मिलते थे, और इसके कारण हमने वो ऐसे मरीजों को जगदलपुर ले जाना जो मरीज को हम समय पर यहाँ पर ठीक नहीं कर सकते। जैसे बच्चों को मलेरिया आता है तो उसको गुनिया के पास पहले वो लोग ले जाते हैं, मांत्रिक के पास ले जाते हैं, तो ऐसे मरीज को स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ कोई अस्पताल जैसी मतलब बेड की वगैरह सुविधा नहीं थी, तो बाद में जब 4-5 साल के बाद एम्बुलेंस मिल गई तब हम उनको ट्रांसफर करना शुरू किया कि तुरंत दौड़ाना उनको जगदलपुर। हमारी एम्बुलेंस और ड्राइवर हमेशा तैयार रहता था, पैसे की कभी कोई कभी पूछताछ हम नहीं करते थे, जैसे ही मरीज आया दौड़ा दौड़ा के, क्योंकि वो ही बेचारे 20-30 किलोमीटर चल के आते थे, और ऐसे में वो मरीज को मतलब जल्दी से जल्दी बिना ज्यादा समय गवाए पहुंचाना ये बहुत बड़ी एक चैलेंज होता था, और वो हम पूरा कर पाते थे, और जब बच्चा अच्छा होता हो जाता था तो बहुत अच्छा लगता था। तो मुख्य रूप से मतलब बारिश में तो ये कटाफ ही होता था, इसीलिए स्वाभाविक रूप से कितना भी बोलो वहाँ के मरीज यहाँ आना और हम वहाँ जाना आसान नहीं था, लेकिन जैसे धीरे धीरे हमारा भी एक अस्पताल का रूटीन बन गया और ये हो गया, और फिर छत्तीसगढ़ बनने के बाद जब ये चालू हो गया अपना अस्पताल सरकारी

0: अस्पताल धीरे धीरे चालू हो गए, तब हमने अंदर उन्हीं मरीजों के तक ले जाने के लिए मेडिकल कैंप शुरू किए, मतलब कम से कम 20 किलोमीटर अंदर से गांव में मेडिकल कैंप लगाना, क्योंकि ऐसे लोगों को बारसूर आने की सुविधा ही नहीं थी, क्योंकि तब तक भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो ऐसे मरीजों के लिए हम लोग ज्यादातर काम करना चालू किए और उन तक पहुंचाना, मतलब जो मरीज अंदर अंदर पारा के नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे मरीजों को पहुंचने के लिए हमने मेडिकल कैंप जगह
1: जी। सुनीता जी, अभी आपने बताया कि जब ऐसी स्थिति आती है, आपात को स्थिति, तो घर वाले बैगा बुनिया के चक्कर में ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचल है और वहाँ पे लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं जब नहीं मिल पाती हैं, तो वो अक्सर करके इस तरह के झाड़ फूक पे ज्यादा विश्वास करते हैं, तो ये कितना नुकसानदायक होता है स्वास्थ्य के लिए और किस तरह लोग इसके चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं।
0: बहुत सारा होता था उस समय तो और ज्यादा, क्योंकि मैं अब जब हमारा चर्चा हुआ वैसे कि सुविधा कुछ थी नहीं आने जाने का, तो उनके सामने और कोई चारा भी नहीं था, और शुरू से ही वो मान्यता भी थी कि भाई मांत्रिक के पास जाएंगे तो। दूसरी एक बात छोटी सी, जो छोटी है लेकिन बहुत ध्यान देना चाहिए, कि जब भी कभी उनको बारसूर तो ठीक है, लेकिन बारसूर या जगदलपुर या रायपुर भी जाना है या दंतेवाड़ा भी जाना है ना सरकारी अस्पताल में, तो उनके लिए वो एक अलग माहौल है, उनके लिए वो भाषा अलग, वो सामने वाले दिखने वाले सब लोग अलग, जो शहरी है जिनको हम पायका बोलते हैं यहाँ की भाषा में, तो ऐसे लोगों के साथ उनको बात करने में डर लगता है, तो उनको ऐसा लगता था कि भाई वहां जाने की जगह अपन मांत्रिक के पास ही जाएंगे। तो हमको ये भी काम करना पड़ा शुरू में कि ये जो भाई आप बच्चे का जान गंवा रहे हो, और ऐसे बहुत सारे बच्चों को जान गंवानी पड़ी सांप काटने में, इसमें भी वो पहले मांत्रिक के पास ही जाते हैं, और मलेरिया जैसी बीमारी यहाँ खतरनाक फाल्सीपेरम मलेरिया है, मतलब किलिंग पेटल मलेरिया है, तो ऐसे मलेरिया में तो उनको तुरंत दवाई की आवश्यकता है, मांत्रिक के पास जाके वो करना ठीक नहीं है। ये धीरे धीरे हमने उनके मन में बिठा दिया कि बच्चे की जान अगर समय पर आपको बचाना है तो आपको समय पर दवाई, आप उसका मलेरिया है नहीं है टेस्टिंग करिए, उसके बाद आप दवाई लेके उसके बाद आप अगर जाना है तो मांत्रिक के पास जा सकते हैं। तो ये उनके मन में हमने विश्वास दिलाया कि भाई आपको दवाई बहुत आवश्यक है तो आपको उसके लिए आगे चलो, टीबी के लिए भी मांत्रिक के पास जाके पूरा खोखला हो जाएगा पेशेंट अंदर, उसके बाद वो हमारे पास आता था, मतलब बहुत ही कठिन था उस समय।
1: जी जी जी, वाकई में इस प्रदेश में काम कर पाना काफी कठिन होता है। जी, आपने उन सब परिस्थितियों में काम किया है, तो सुनीता जी कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आपसे और बातें करेंगे, उससे पहले हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का कोई एक गीत।
0: हाँ, मेरे पसंद का चयनित तो ये है कि जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जुबां, फिल्म माया का गीत है।
1: जी, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में पद्मश्री सुनीता गोडबोले जी की पसंद का ये गीत।

0: श्रोता, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे सुनीता गोडबोले से, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और ये अभिजमाड़ बस्तर के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर कार्य करती हैं। सुनीता जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब हम आपसे जानना चाहेंगे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त होने के बारे में कि जब आपको पता चला कि आपको नामित किया गया है और आपको प्रदान किया जाएगा, आपको कैसा लगा?
1: पद्मश्री पुरस्कार को तो हमें 25 जनवरी को पता चला, 25 जनवरी 2026 को गृह मंत्रालय से फोन आया था। बहुत अच्छा लगा और हम इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार और हमारा दंतेवाड़ा जिला प्रशासन, इन सबके आभारी हूँ। और दक्षिण बस्तर जो क्षेत्र है, ये पूरा खाली, उसका नाम लेते ही सुकमा, दंतेवाड़ा जो भी नाम लेते ही नक्सलवाद इतना ही लोगों के सामने उभर कर आता था। अब हम सोचते हैं कि ये सब होने के कारण लोगों में बस्तर में जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, वनोपज, जैविक खेती, इसके बारे में जो भी प्रश्न है, ये बहुत बड़े चैलेंजेस है। कृषि को लेकर भी बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि आज वहाँ के लोग भी, मतलब कृषि आधारित जो उनकी जीविका है उसको अगर अच्छे से करना है तो जैविक खेती जो है वो और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए उनको ज्ञान देना बहुत जरूरी है और सरकार इस पर ध्यान दे रही है और ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब हमारे मन में, मतलब उसी समय ये सभी बातें भी आई कि भाई ये केवल हमारा बड़ा, मतलब हमको महत्व मिले ये बात इसमें नहीं होना चाहिए, तो बस्तर के जो प्रश्न है वो सामने आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की, ये बात ही पहले, सबसे पहले मन में आई।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनीता जी, डॉक्टर रामचंद गोडबोले और आपको दोनों को संयुक्त रूप से पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया, तो जिस क्षेत्र में आपको प्रदान किया गया है, बस्तर जैसे सुदूर अंचल में फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को देना, तो स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसी घटना हुई हो कि जिस व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचना जरूरी था लेकिन वो नहीं पहुंच पाया, ऐसी कोई घटना आपके सामने हुई?
1: एकदम एकदम, हमारे पहचान के मतलब कार्यकर्ता ही है हमारे
0: जी।
1: तो उनकी बेटी को वो ला रहे थे हमारे पास, उसकी बेटी को झटका आ रहा था और वो अबूझमाड़, मतलब नदी के उस पार, इंद्रावती के उस पार, और दो, मतलब इंद्रावती उस उधर भी इंद्रावती दो तीन बार पार करके जाना पड़ता है
0: जी जी।
1: ऐसा वो वैसे वो मंगनार करके गांव है, वहाँ का वो व्यक्ति पहनू दादा उसको हम बुलाते हैं, समय वो उनकी बेटी केवल 5 साल की थी
0: जी जी।
1: तो वो उसको लेके वो आ रहे थे और आते आते, मतलब उसको पहले तो जैसा अभी बात हुआ अपना, वैसे मंत्रिक के पास ही गए थे वो
0: जी।
1: उसके बाद फिर कुछ ठीक नहीं हुआ करके फिर इधर लाएंगे भाई, वासुर आश्रम में ले जाएंगे अस्पताल में करके ला रहे थे। लाते लाते ही बीच में बारिश के दिन तूफान बह रही थी इंद्रावती, और उसके में दो नाव डालना और उसको लाना ये बहुत जोखिम भरा काम था
0: जी,
1: लेकिन उन्होंने अपने बच्ची के चलते वो सब किया और इस पार आ गए, बारसूर तरफ आ गए, लेकिन वहां से भी तो 5 किलोमीटर इधर आना था, लेकिन ये सब करते करते वो बच्ची का जान गए जैसा हो गया ऐसा, मतलब वो एक्चुअली वो गई ही थी लेकिन उनको लगा कि इसकी जान है शायद, तो लेकिन वो पूरी ही खत्म हो गई थी। फिर वो उसको पार करके फिर वो घर चले गए, वहां से फिर मांत्रिक के पास गए, फिर मांत्रिक ने उनको बताया कि नहीं, इसका इलाज नहीं हो सकता। ये घटना जब उसने हमको, जब अगले शुक्रवार बाजार लगता है यहाँ, वो बाजार के दिन आया हो और रोते रोते पूरा बात बता रहा था, तब हमको

0: इतना दुख हुआ और इतना ये लगा कि उसके बाद का जो पानी खत्म होने के बाद की जो धूप है, वो धूप के दिनों में हम गांव में ये बताना जाना शुरू किया कि अरे भैया आप लोग इस प्रकार से ऐसा घर में मत रखो, आप कैसे भी करके जल्दी से जल्दी उसको लाओ। और सबसे पहली बात है कि वो बच्चे को गीले कपड़े से पोंछते जाओ ताकि उसको बुखार बढ़कर मस्तिष्क तक ना जा पहुंचे। और मलेरिया से बचाव मतलब केवल और केवल है ये अपना मच्छरदानी, मच्छरदानी ही है तो मैं वो बचाव है मलेरिया से। गोली खाना तो बुखार आने के बाद होता है,
1: जी,
0: है ना, दवाई जो है वो बाद में होती है, लेकिन सबसे पहला है मच्छरदानी। तो मच्छरदानी रखोगे, हम लोग कब से मच्छरदानी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जब देना चालू किया तो कुछ लोगों के ध्यान में आया, कुछ लोग करते हैं लेकिन फिर भी अभी भी अंदरूनी इसमें उसका रखरखाव ठीक से रखना जानते नहीं है, फिर वो दो चार महीना उपयोग करते हैं उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। लेकिन ये एक झकझोरने वाली ही घटना थी, इतनी छोटे बच्ची का उन्होंने प्रयास किया, ऐसा नहीं कि वो घर में बैठे रहे, लेकिन थोड़ा देर से प्रयास होने के कारण और बारिश के कारण उनको वो और देर हुई और उसके कारण वो अपने बच्ची के जान से हाथ धोना पड़ा, तो उसके लिए वो आज भी पछताते हैं।
1: जी जी जी, इसीलिए कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। और रामचंद्र गोडबोले जी और आपने मिलकर जो कार्य किया है ये काफी सराहनीय है। तो सुनीता जी, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आपसे चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक और गीत हम सुने।
0: गरजत बरसत सावन आयो रे, सुमन कल्याणपुर जी का है, बरसात की रात का गाना।
1: जी जी जी, तो आइए सुनते हैं सुनीता जी की पसंद का ये गीत।

0: से जिन्हें हाल ही में 2026 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से है और बालसोर में रहती है। वहीं इन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कई कार्य किए हैं, दुर्गम इलाकों में इन्होंने स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई है। तो सुनीता जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो सुनीता जी, कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले वर्षों में आप वहां रहकर अभी जो चिकित्सा सुविधाओं और चिकित्सा संबंधी कौन कौन से सेवा कार्य आपने और निर्धारित किए हैं?
1: हाँ, हम लोग मेडिकल कैंप्स हमारे अंदर अंदर गांव में, जहां पर कुछ पहुंच नहीं है अभी किसी की और उन लोग आ नहीं सकते मरीज लोग इस प्रकार से, तो वहां पर हम करते हैं। केवल मेडिकल कैंप नहीं लेना है, उसका फॉलोअप भी लेना है कि कौन से मरीज को कमजोरी के लिए दवा देना है। तो डॉक्टर साहब 3 महीने की दवा लिख के देते हैं, हम 3 महीने की दवा तो एक साथ नहीं दे पाते क्योंकि उनकी उतनी समझ है नहीं है कितना खाएंगे ये सब, तो उनको 15 दिन से पहले दवा देते हैं, उसका फॉलोअप लेते हैं। फिर उसके साथ साथ मतलब फॉलोअप का ये एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि जो रेफरल मरीज है, मतलब जो मरीज जिसको सुना ही नहीं दे रहा है, या किसी को कोई महिला है उसको कोई पीसीओडी या गायनेक कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे मरीजों को हम जगदलपुर ले जाते हैं। आवश्यकता पड़े तो कभी जब पास में है तो छोटा बीमारी है तो जनतावाड़ा भी ले जाते हैं। तो ये रेफरल का सर्विस हो गया, ये मेडिकल कैंप के बारे में। और दूसरा है एक जो मुख्य हमारा अभी पिन पॉइंट प्रोग्राम है, वो है मास, मतलब माल न्यूट्रिशन एनीमिया एलिविएशन स्कीम, यानी आपको कुपोषण और रक्ताल्पता खून की कमी, ये दो के बारे में, क्योंकि सभी उनकी जो बीमारी की जो जड़ है वो आज इतने मतलब कम से कम 20-22 साल के बाद हमको ध्यान में आया, यानी हमने अध्ययन करके ये निश्चित किया कि भाई ये खून की कमी ही उनके जड़ में है। तो ये खून की कमी अगर कम करना है तो उसके लिए हमको सुपोषित मतलब पोषक आहार देना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग 3 साल से 13 साल के बच्चे का जिसका हीमोग्लोबिन कम है, 8 से नीचे है, ऐसे बच्चों को हम चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उनको हम 6 महीना का पोषक आहार देते हैं, ताकि उसके साथ साथ हम मल्टीविटामिन आयरन, उनको मलेरिया ना हो इसलिए मलेरिया की दवाई तो सबसे पहले पेडियाट्रिशियन को दिखाना, उनकी जो ट्रीटमेंट ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगी वो सब क्या उसका उपयोग करना, उसके बाद फिर ये मल्टीविटामिन और ये सब चालू करना, पोषक आहार चालू करना, और उसके साथ साथ फिर उनको उनका वजन लेना और हर महीना उनका खून जांच करना। इसी से हमको पता चला। फिर इसके साथ साथ हमने दाल और तेल भी बढ़ाया ताकि वो दोपहर का भोजन में दाल खाए ताकि प्रोटीन उनको जाए, क्योंकि प्रोटीन की कमी है भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, इसके कारण शरीर में मजबूती नहीं है और वो जो जब वो 40 के हो जाते हैं तो वो अलग अलग बीमारियों की बीमारियां नहीं मतलब दर्द का, शरीर दर्द होता है, सिर दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, ऐसी शिकायतें करते हैं, तो उसका कारण मूलतः कैल्शियम और प्रोटीन की कमी। तो ये सभी बातें हम उनको देते हैं और उसका पूरा लाभ होता है। हमारे पास ऐसे बहुत अच्छे रिजल्ट है कि जिसका हीमोग्लोबिन 7 था 6 था नॉन रिकॉर्डेबल था, ऐसे हीमोग्लोबिन 12 तक गया है। तो ये एक प्रोग्राम हो गया। अच्छा, इससे भी और एक बेसिक कार्यक्रम ऐसा है कि 6वीं से 11वीं तक के बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बिठा के उनको अपने शरीर को जानो, यानी शरीर ही आपका महत्वपूर्ण है, शरीर ही सभी इसका साधन है, उसको आप अगर कुछ काम करना भी चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो या IAS बनना चाहते हो या कुछ भी बनना चाहते हो, तो पहले आपका शरीर ही अच्छा चाहिए। तो इसलिए आपके शरीर को जानो और उसको स्वस्थ रखो, अपने घर में जो कुपोषण है, रक्ताल्पता है, खून की कमी है, उसको पहचानो। वो कैसे पहचानना आदि बातें हम बताते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर गुटखा गुड़ाखू और ये नशाखोरी भी बहुत है और इसकी लत बच्चों में ना लगे, बच्चे उस वहां से दूर रहे, ये सब समझाने के लिए हम ये कार्यक्रम चलाते हैं स्कूलों में। ये हमारे 3 मुख्य कार्यक्रम अभी चल रहे हैं।
0: जी जी जी जी सुनीता जी, बहुत अच्छे कार्यक्रम है और इनसे ज़रूर वहाँ की आम जनता लाभ ले रही है और आगे भी लाभ लेती रहेगी। और आपके द्वारा किए गए प्रयास सार्थक भी हुए हैं और जो अभी प्रयास आप कर रहे हैं आगे भी सार्थक होंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज आपने हमें समय दिया और अपनी बातें हमें बताएं और आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: रायपुर आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हमारे विचार हमारे मन की बात बताने के लिए मतलब समय दिया, धन्यवाद।
0: इनसे मिले कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सुनीता गोड़बोले से बातचीत, प्रस्तुत किया रमा शंकर ने।
1: कार्यक्रम इनसे मिलिए का अनुप्रसारण किया जा रहा था अभी आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 9 बजने को है विविध भारती कार्यक्रम। अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

श्रोताओं, आज है अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग डे। हर साल ये 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2017 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी और पहला IUU दिवस 5 जून 2018 को मनाया गया था। इस महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी और पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट PSMA। यह दिवस PSMA की भी वर्षगांठ का प्रतीक है, जो अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए दुनिया की पहली बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है ना, अवैध मछली पकड़ने और इससे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान से दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है, पढ़ाना है।

फिशिंग से महासागरों में जीव विविधता, समुद्र संसाधनों और मछुआरों की आजीविका को भी भारी खतरा होता है श्रोताओं, जो कि नियमों का पालन करते हैं।

अमिताभ भट्टाचार्य की बोल प्रीतम की बनाई धुन पर अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाजों में ए दिल है मुश्किल फिल्म का ये गीत। और अब आपको सुनाने जा रहे हैं समीर का लिखा गीत, प्रीति पिंकी और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में मुझे कुछ कहना है फिल्म से।

0: से सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।

श्रोताओं, अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज 4 बजे शाम को पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा गीतों भरी कहानी। कहानी का शीर्षक है नजरिया। वाचन स्वर नेहा शर्मा का है, संपादन सहायक काजल भतरगी, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। सुनना नहीं भूलिएगा। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं इश्क विश्क फिल्म का ये गीत अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजों में। समी ने इसे लिखा है, अनु मलिक ने संगीत से सजाया है।

0: सुनिए एक खुशखबरी, आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियों फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
1: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आप मुझे अच्छी लगने लगी। इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और अभिजीत के युगल स्वरों में, इब्राहिम अश्क की शब्द रचना है, राजेश रोशन की बनाई तर्ज।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे आप मुझे अच्छी लगने लगी अलका याग्निक और अभिजीत की युगल आवाजों में। और अब आपको कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत सुनवाने जा रहे हैं आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल सोना मोहपात्रा की आवाजें कुमार का लिखा गीत विशाल शेखर का संगीत। इससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर और रात को 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार केंद्रित रहेगा अभिनेत्री सोनम कपूर पर। सुनना नहीं भूलिएगा।

अब इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा मुझे यानी पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनो कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में भर।

श्रोताओ, आज के फनकार में जहां हम बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपनी पहचान दी, एक नई चमक दी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही अभिनेत्री की जिन्होंने फैशन और एक्टिंग दोनों को ही नया आयाम दिया।

मोनू कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

अब बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनू ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

देखी तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार, मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

0: के बाद आई खूबसूरत एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।
1: आए तुझे भी नानी माता को माती माता।

राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती है। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आकर नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है, बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था, लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ा।

इसके बाद फिल्म मिर्जा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी मिर्जा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने मिर्जा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। मिर्जा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

राजा जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने

बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की श्री के हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

0: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:55 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री आज पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को करेंगे सम्मानित। और मानसून केरलम पहुंचा, छत्तीसगढ़ में 12 जून तक पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल रमेश डेका आज लोकभवन और नया रायपुर स्थित निर्माणाधीन लोकभवन परिसर में वृक्षारोपण करेंगे। वहीं वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा रायपुर के राजीव स्मृति वन में प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर रायपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र से होगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा आज सांकरा पाटन में एक दिवसीय खेत बचाओ अभियान कार्यशाला और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उद्यानिकी मंत्री रामविचार नेताम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अभियान के तहत किसानों को मृदा संरक्षण, प्राकृतिक खेती और जैविक खाद के उपयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। कृषि वैज्ञानिक आधुनिक कृषि तकनीकों तथा फसलों में कीट और रोग प्रबंधन के उपायों से भी किसानों को अवगत कराएंगे। कार्यक्रम में कृषि उपयोगी सामग्री का वितरण भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश की शराब फैक्ट्रियों से निकल रहे जहरीले पानी से प्रदूषित हो रही नदियों को लेकर नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दो अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट कमिश्नर प्रदेश की 3 शराब डिस्टिलरी यूनिट्स का संयुक्त निरीक्षण करेंगे और आगामी 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप 10 में स्थान बनाने वाले पंजीकृत श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को सम्मानित करेंगे। योजना के तहत प्रत्येक मेधावी छात्र को 1,00,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 1,00,000 रूपये का विशेष अनुदान देने का भी प्रावधान है। विष्णुदेव साय ने कल बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 28वीं किश्त जारी करते हुए प्रदेश की 68,54,000 महिलाओं के बैंक खातों में 642,27,77,950 रूपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। महतारी वंदन योजना इस दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल के रूप में सामने आई है। दक्षिण पश्चिम मानसून कल 4 जून को केरलम पहुंच चुका है। इसके 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मध्यप्रदेश के ऊपर चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में नमी बढ़ी है और आसपास में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली गिरफ्तारी की है। ईडी ने अभनपुर निवासी कारोबारी जयप्रकाश गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA के तहत गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने 3 जून को आरोपी को विशेष न्यायालय रायपुर में पेश किया, जहां से उसे पूछताछ के लिए 3 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री आज पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को करेंगे सम्मानित। और मानसून केरलम पहुंचा, छत्तीसगढ़ में 12 जून तक पहुंचने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी किया जा रहा था आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 10 बजे हैं। अब आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य एवं शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम विवरण में। अब से कुछ पलों बाद यानी 10:10 पर सुनिएगा हमारे केंद्र से कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारे केंद्र से ही आनंद लीजिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। समय होगा 10:30 का। प्रायोजित कार्यक्रम हमाराथी अमर गोठ का प्रसारण समय होगा शाम 5 का। कार्यक्रम भजन संध्या हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 5:10 पर। विविध भारती कार्यक्रम जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे से, अपराह्न 12 बजे से और रात्रि 9 बजे से। चित्रपट संगीत शाम 5:30 पर। फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन प्रोग्राम लीजिए फिर सुनिए कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे इसका पहला भाग शाम 6:20 पर शाम 7 का। दूसरा भाग सुनिएगा कृषकों का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण समय होगा शाम 7:20 का, जिसमें आज की बात का विषय होगा इस साल के पशुपालन कार्य और आज की नसीहत के अंतर्गत सुनिएगा सुरक्षित भंडारण कर अनाज को कीटों एवं चूहों से बचाएं। इसके साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत रात्रि 8:20 पर। फिल्म संगीत रात्रि 8:30 पर। विविध संगीत रात्रि 10 से। और फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा सुनिएगा रात्रि 10:30 पर।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जाने, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत के महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वाज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादन किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहले पहला सुर दिया जदुभट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदुभट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए मिशन बिल्डर नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंता भी रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन की हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्रेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नवलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of स्वदेश पूजा। On 1876, वेस्ट बंगाल की हुगली जिला में गोपाल चंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था। और मैंने बोला कि 1871 में गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए स्वाभिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखे तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी एट 90। इस संदेश के साथ ही कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 10:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत की पहली पेशकश में लीजिए सुनिए राहुल जैन के स्वर में और संगबिदा रॉय के स्वर में ये गाना। रचना वंदना खंडेलवाल की है और संगीत है राहुल जैन का।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: मंगल भवन मंगल हारी,
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: दीवाना दीवाना, ये थे इस गाने के बोल। अभी आप सुन रहे थे राज बर्मन की आवाज में, मनोज यादव की रचना थी और चित्रंजन भट्ट का संगीत।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संडली।
7: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और कार्यक्रम की अगली पेशकश में हम आपको सुनवा रहे हैं राहुल जैन और अदिति सिंह शर्मा के युगल स्वर में ये बहुत ही प्यारा गीत। रचना अमित दीप शर्मा की है और संगीत राहुल जैन का।

गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन रहे सभी सुनने वालों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सफर में। जी हाँ, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आपके पसंदीदा गाने के साथ ही। इसके लिए हमें फरमाइश की पत्र लिखा सुरेश कुमार सारथी, कमल कांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिज कांत सारथी बेमेतरा से, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से है, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। यही गीत सुनना चाह पत्र आया जतुका किशनपुर से है, आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान रही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चंदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हैं हीना कैसर, मोहम्मद वकील राही और फिरोज आलम नाज परवीन। झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ से यही गीत सुनना चाह लक्ष्मण वाधवानी, विमला, हर्ष, खुशी और शुभम वाधवानी। ताजपुर मोरबा से हैं कारी राय, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्र और ढोली साकरा से यही गीत सुनना चाह पत्र आया जयंत कुमार बैरागी का। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर गदर फिल्म का ये गाना उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में। गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत है उत्तम सिंह।

0: आकाशवाणी F90।
1: नमस्कार, मैं हूँ कुंती साहू रायगढ़ शहर से। आज मैं बहुत खुशी और गर्व के साथ आकाशवाणी रायगढ़ को भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। मुझे याद है मेरी नन्ही उम्र में जब घर में रेडियो लगा था तो पूरा परिवार शाम को उसके आसपास इकट्ठा हो जाता था। चाहे समाचार हो, फिल्मी गीत हो या किसी नाटक का प्रसारण, रेडियो हमारी दुनिया की खिड़की था। उसने हमें देश और दुनिया से जोड़े रखा। 90 साल यह समय किसी एक पीढ़ी का नहीं बल्कि चार पीढ़ियों का साथ है। आज तकनीक ने कई रूप ले लिए, लेकिन रेडियो की जो निश्चल अपनत्व है वह कहीं नहीं मिलता। रेडियो ने हमारी छत्तीसगढ़ी बोली और लोकगीतों को भी वह मुकाम दिलाया जिसके वे हकदार थे। मैं कुंती साहू रायगढ़ की ओर से उन सभी स्त्री पुरुषों को नमन करती हूँ जिन्होंने इस माध्यम को दशकों तक जीवित रखा। हर उद्योग शिक्षा, हर तकनीशियन, हर उस कलाकार को धन्यवाद जिनकी आवाज हमारे घरों तक पहुंची। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से?
7: अनजान ऐप से बचें।
8: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं आपके पत्रों व ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। आपकी फरमाइश और कार्यक्रम की अगली पेशकश में हम आपको सुनवा रहे हैं आप सबकी पसंद पर भेजा पत्र द्वारा ये गाना। इसके लिए पत्र आया लक्ष्मणपुर से है सरोजनी रजक, सीमा कनक, पल्लवी, रश्मि साहू और गीता साहू। हटई चौक बिलाईगढ़ से है खीकराम देवांगन, रेनू रजनी और पिंकी देवांगन। रिंगनी छत्तीसगढ़ से यही गीत सुनना चाह। पत्र आया दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से है नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रणामिका और उत्कर्ष नेताम। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से है हरदेवमिका, बलविंदर बिरक, जयतेग और मिका बिरक। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर नाड़ी फिल्म का ये गाना उदित नारायण की आवाज में। गीत लिखा समीर ने और संगीत है आनंद मिलिंद का।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और इस कार्यक्रम की अगली पेशकश में फरमाइश की आप सबने सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा और साहिल बजाज। यही गीत पसंद किया, पत्र आया दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल का बलौदा अकलतरा से। लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से हैं नारायण भाऊ, विठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना, गणेश कार्तिक, ब्रोनो, उषा सोरना, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर सौदागर फिल्म का ये बहुत ही प्यारा गीत। लता मंगेशकर की आवाज में गीत संगीत रविंद्र जैन का है।

तेरा मेरा साथ रहे, ये थे इस गाने के बोल। अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के मधुर स्वर में, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अगला और अंतिम नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं आप सबकी पसंद पर। इसके लिए खत लिखा इंदिरा नगर रायगढ़ से हैं शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा महादेवघाट अमलेश्वर से हैं। डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से हैं। मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर देवता फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल स्वर में। गीत लिखा गुलजार ने और संगीत आर डी बर्मन का है।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: श्रोताओं, आप भी अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं आकाशवाणी रायगढ़ के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इसके लिए नोट करिएगा पत्र व्यवहार का पता। पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़। पिन संख्या है 496001। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं shrotarayagad@gmail.com पर। इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश से मुझे यानी अपनी दोस्त एंड होस्ट रजनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आपके पत्रों व ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 11 बजने को है, 11 बजे विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। वह इसके ठीक पश्चात यानी कि 11:55 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है, और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7-8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राजकुमार रिजवी की आवाज से। कलाम है बशीर बद्र का।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल। कलाम था जिगर मुरादाबादी का। विविध भारती से यह है कार्यक्रम रंग तरंग।

0: भीड़ फिल्म का ये सोहर आप सुन रहे थे। रोमी के स्वर में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गीत, गजलें, कव्वालियां और नॉन फिल्म एल्बम के कुछ गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मिताली सिंह की आवाज थी। एल्बम का नाम था नशे मन। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। राजेश रेड्डी की गजल पंकज उधास की आवाज में, एल्बम का नाम नबील।

0: रेडियो है चल। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने लोगों से पर्यावरण बचाने संकल्प दोहराने का आग्रह किया। भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में ईडी ने की पहली गिरफ्तारी। और मानसून केरलम पहुंचा, छत्तीसगढ़ में 12 जून तक पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में प्रकृति सबसे बड़ी सहयोगी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक वृक्ष, पुनर्स्थापित किया गया इकोसिस्टम और सतत निर्णय राष्ट्र के भविष्य को मजबूत बनाता है। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित, स्वच्छ और अधिक लचीला भारत बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल रमेश डे का आज लोकभवन और नया रायपुर स्थित निर्माणाधीन लोकभवन परिसर में वृक्षारोपण करेंगे। वहीं वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा रायपुर के राजीव स्मृति वन में प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक पेड़ माह के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर रायपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र से होगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली गिरफ्तारी की है। ईडी ने अभनपुर निवासी कारोबारी जयप्रकाश गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA के तहत गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने 3 जून को आरोपी को विशेष न्यायालय रायपुर में पेश किया, जहां से उसे पूछताछ के लिए 3 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप 10 में स्थान बनाने वाले पंजीकृत श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को सम्मानित करेंगे। योजना के तहत प्रत्येक मेधावी छात्र को 1,00,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 1,00,000 रूपये का विशेष अनुदान देने का भी प्रावधान है। दक्षिण पश्चिम मानसून कल 4 जून को केरलम पहुंच चुका है। इसके 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मध्यप्रदेश के ऊपर चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में नमी बढ़ी है और आसपास में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश में एक ही दिन में आयोजित होने जा रही 2 महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DELED की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है, इसलिए परीक्षार्थियों के पास आगामी परीक्षा में शामिल होने का विकल्प सुरक्षित है। ऐसे में पूरी परीक्षा प्रणाली के कार्यक्रम में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। गौरतलब है कि 8 जून को ही DELED के साथ ही CGPSC की मुख्य परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 9 जून को नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। रायपुर जिले के दिव्यांग युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा आज सुबह 11 बजे से बैरन बाजार स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने लोगों से पर्यावरण बचाने संकल्प दोहराने का आग्रह किया। भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाले मामले में ईडी ने की पहली गिरफ्तारी और मानसून केरलम पहुंचा, छत्तीसगढ़ में 12 जून तक पहुंचने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
1: चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
2: After a detailed assessment,
3: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय

0: लिया है।
1: At 5.25%.
2: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपये के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी की आवाज से, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म मन की आंखें।

ममता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। ये दूसरा आदमी फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो।
1: हाँ।
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ, कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा।
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है
1: तो?
0: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
2: सखी सहेली।

0: ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कामजोर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंदीवर के बोल थे। डाक फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: डाक फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। इस कार्यक्रम का स्वरूप तो आपको पता ही चल चुका है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम संक्षेप में बता देते हैं। वैसे ये जो इबारत लिखी जाती है, आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा ही इस बात में है कि गानों की आपकी हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं, तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए। तो फिर ध्यान से पढ़ लीजिए कविता। वैसे बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ ली है और लिखा भी है कि आज की इबारत में तो कविता है। भाई, कविता थोड़ी कठिन है, मुश्किल हो रहा है अंदाज़ा लगाना, तो यही तो बात है। पहेली अगर बड़ी आसानी से समझ में आ जाए तो वो पहेली ही क्या। तो चलिए हम वो इबारत पढ़ देते हैं कविता की शक्ल में। वो थी पहाड़ों वाली लड़की, चीड़ और देवदार की छांव में पली, बुरांश के फूलों से दहकती, किसी खूबसूरत झरने सी चंचल। पेड़ पौधों और जंगलों के बीच वो हिरनी सी भरती कुलाचे, पगडंडियों पर उसके पांव पड़ते तो धरती के आंचल में एक मधुर कंपन जाग उठता। खुली वादियों में चलते हुए वो देखती एक ख्वाब, नीले अंबर के पार वो देखती तो बारिश की बूंदें जैसे प्रेम की माला पिरोती। प्यार के राग पर वो गुनगुनाती, जहां बादलों के पंखों पर बैठकर मन उड़ने लगता। वो आसमान की ओर निहारती, कहीं दूर बादलों की आंख छलक पड़ती। बारिश उतरती पहाड़ों की देह पर तो झरने नदी का हाथ थामे गुनगुनाने लगते कोई खूबसूरत गीत। हवा उसकी जुल्फों को सहलाकर गाती कोई सुरीला नगमा, और जब उसकी जुल्फें पवन के संग थिरक उठती तो घाटियों में गूंजता प्रेम का दर्द भरा राग। उसकी आंखों में उतरकर रच देती सिंदूरी कविताएं, वो फूलों से नहीं उनकी खुशबू से प्रेम करती थी। नदियों से नहीं उनके सफर से, और आकाश से नहीं उसकी असीम उम्मीदों से, उसके दिल में अजब सा संसार था। एक पूरा जंगल सांस लेता था उसके दिल में, नदियों का संगीत, पहाड़ों की चुप्पी। वो थी पहाड़ों वाली लड़की, जिसकी हंसी में झरनों की कलकल थी, जिसकी आंखों में बादलों की नमी थी। अब भाई, बहुत सारे शब्द मिल गए आपको, तो आज तो ऐसे लगता है कि शब्दों कि माला पिरोई जाएगी और ढेर सारे शब्द होंगे, उसमें मुझे ही मुश्किल पड़ जाएगी कि कौन सा वाला गाना सुनवाएं, कौन सा वाला नहीं। चलिए फिलहाल ये गाना सुनिए और देखिए कि इसमें कौन सा शब्द आया है। गीतकार संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। फिर वही दिल लाया हूँ, फिल्म मोहम्मद रफी की आवाज़।

तो भाई ये गाना आपने सुना, फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था, कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी आई है और ज़्यादातर श्रोता ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद ममता जी इस कार्यक्रम में आई हैं, पहली बार आई हैं और कहाँ गायब थी। भाई गायब तो कहाँ थे, हम तो ऑन एयर होते थे और आपसे गुफ्तगू होती थी, अभी हाल में सजीव प्रसारण आपने देखा है माने जी के साथ, गायब कहीं नहीं थे, बस थोड़ी सी मसरूफियत हो जाती है तो कुछ प्रोग्राम छोड़कर कुछ नए प्रोग्राम करने पड़ जाते हैं। बहरहाल चलिए ये टिप्पणी हम पढ़कर सुनाते हैं। हमारी एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत एक खूबसूरत कविता है, तो मैंने सोचा मैं भी एक कविता रच देती हूँ, साझा कर देती हूँ। इन्होंने आगे लिखा है कि बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे याद नहीं इसके रचयिता कौन है। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम दोनों चले वहां, जहां दिन भर महुआ पर झूले रात को चुपड़ते हैं फूल, जहां दिन भर महुआ पर झूल रात को चुपड़ते हैं फूल, बांस के झुरमुट में चुपचाप जहां सोए नदियों के कूल, भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम दोनों चले वहां, विहग मृग का हो जहां निवास, जहां अपने धरती आकाश। कविता आगे भी इन्होंने लिखी, काफ़ी लंबी है और बहुत सारे श्रोताओं की चूंकि टिप्पणियां आ रही, तो हम चाहते हैं कि आप संक्षेप में लिखें ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबारत रूपी कविता बहुत पसंद आई, पर्यावरण दिवस की झलक दिख रही है, आपको नमस्कार। एक श्रोता ने लिखा है कि हर पंक्ति गुनगुनाते हुए बता रही है आज के सुंदर सुहाने सफ़र में एक खूबसूरत लड़की, पहाड़ देवदार के बगीचे में बाहर के झरना नदी चंचलता नीले नंबर अंबर, चांद जवाए हमको तरसाए, बारिश देह पर पड़ते टिप टिप बरसा पानी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। मतलब इतने सारे गानों के बोल लिख डाले हैं कि अब हमें मुश्किल पड़ रही है कि पूरा कैसे पढ़ें। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की काव्य रूपी इबारत विश्व पर्यावरण दिवस के लिए है। इबारत में काल्पनिक पहाड़न युति का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि इसमें कहीं प्रकृति की छटा भी है, लेकिन कहीं उन जो वो लड़की है ख्वाबों वाली पहाड़ों वाली लड़की, उसके साथ जो शब्द हैं उन शब्दों पर गाने लिए गए हैं, और उस इबारत से आपके मन में जो कविता आ रही है वो भी आप लिखिए, और आपके जहन में जो गाने आ रहे हैं वो भी सुझाइए, हो सकता है आपका गाना हम शामिल कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गुमराह फिल्म का गाना सुनवाते हैं, तो बताइए कि इस कविता से कौन सा वाला शब्द इसमें शामिल है। हाँ, पिछले गाने में शाम शब्द आया था जो हमने चुना था, वो हम आपको बता रहे हैं।

तो गुमराह फिल्म के गाने में इस कविता से कौन सा शब्द आ रहा है, और साथ में आपको बूझना है कि कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना।

0: का हार पुकारे, आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार।
1: गुमराह फिल्म का गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें। हमने आपसे पूछा था कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना, सुनील दत्त और माला सिन्हा। तकरीबन सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफ़र में पहाड़ों नदियों के गीतों की महफिल है, मुझे एक गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली का पसंद आ रहा है, वो अगर आप सुनवा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी ये कविता बहुत ही सुंदर मर्मस्पर्शी है, आपने पहाड़ों हवा बारिश और फूलों की भाषा में एक निर्झर सी आत्मा को उभारा है, नाजुक मुक्त और अनंत उम्मीदों से भरी। हमारी वसुंधरा का प्रतिबिंब पहाड़ों वाली लड़की के माध्यम से प्रकृति के हर एक रूप, उसके गीतों, हवा के सरसराहट, नदियों की चंचलता को जीवंत कर दिया है। ज़रा ये तो बताइए कि आप बात पर्यावरण की कर रहे हैं अगर, तो पर्यावरण की बात जब आती है तो आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं? इस आज के इस प्रोग्राम के टिप्पणी में विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर ये भी आप लिख सकते हैं कि आप निजी स्तर पर क्या करते हैं। जैसे हाल ही में अभी जब सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ थी 2 जून को, तो जब हिमानी शिवपुरी जी, जानी मानी अदाकारा हिमानी जी आई थी, तो उनके हाथों विविध भारती के परिसर में पौधारोपण किया गया था। तो इस तरह से हम निजी स्तर पर चाहे तो रोज एक पौधा रोप सकते हैं। तो अगर एक एक पौधा हम सब ने रोपा तो कितने सारे पौधे हो जाएंगे, जरा गणना कीजिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं की टिप्पणियों पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज मैं कोच्चि में हूँ, बादलों का आनंद ले रहा हूँ, हरियाली बिना बादलों के संभव नहीं। मुंबई में था तो पार्क के पेड़ पौधे आसमान की तरफ नजरें उठाए प्रकृति से मानो गुहार लगा रही थी कि हमारे दुखों का अंत कब होगा, मेघों की गर्जना कब सुनाई देगी, ऐसा लग रहा था मानो वो बेदम से हो गए हैं। पत्तों की हरीतिमा खत्म सी हो रही है, पेड़ों के डंठलों में सीधे खड़े रहने की ताकत नहीं है। कोच्चि में चारों तरफ पेड़ झूम झूम कर बादलों का स्वागत कर रहे हैं। सचमुच यहाँ हम मुंबई में कोई पौधा रोपते हैं तो बस 2 महीने या मुश्किल से 3 महीने बाद वो मुरझाने लगता है, क्योंकि मिट्टी हमें सही नहीं मिल पाती है। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं, माली काका को बुलाते हैं और पौधे नए लगवाते हैं, उनसे मिट्टी नई बदलवाते हैं। तो क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं? अगर करते हैं तो ज़रूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत प्रकृति से जुड़ी, सुंदर नज़ारे, पहाड़, पौधे, नदी, झरने, खुली वादियाँ, आसमान, बादल, बरसात, फूल, धरती, जंगल, पशु पक्षी, प्रेम गीत, प्रेम का दर्द, सुबह की पहली किरण, शाम की सिंदूरी वातावरण वाली आवाज़, मीठी आवाज़। तो आपने गाने कौन से बताए? गाने तो बताए नहीं, गाने भी तो बताते चलिए। जैसे अभी हमने जो गाना सुनवाया गुमराह फिल्म का, हवाएं थीं और फिजाएं थीं और इसके प्यार था, प्यार शब्द भी आया है इस कविता में। तो अब जो अगला गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, ज़रा उसमें ढूँढिए कि कविता में कौन सा शब्द आया था, वो कविता और गाना मैच हो रहा है कि नहीं। आज और कल फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार और संगीतकार का नाम आपको पूछना है।

0: ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
1: आज और कल फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज़, गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। बहुत आसान सवाल था और सभी श्रोताओं ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती के सुरीले सफ़र में जहां एक पहाड़ी लड़की वादियों में घूमती, झरनों में नहाती, फूलों की घाटी में समा जाती है, उसके गीत उन वादियों में गूंज रहे हैं। वो एक प्रेमी की तलाश में है जो एक पहाड़न के दिल को समझे, उसके जज्बात को समझे, वो अपना ले, तमाम परदेसियों की तरह छोड़कर चला ना जाए। इस बात से कि परदेसी की तरह छोड़कर चला ना जाए, फिल्म जब जब फूल खिले याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के इस कार्यक्रम में प्रकृति की बातें होंगी, सब कुछ है, प्रकृति भी है, प्यार है, दर्द का राग है, कविता एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मौसम पर आधारित है आज का कार्यक्रम, मानसून की आमद होने वाली है, केरल से आना शुरू हो गया है, आज बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे तो लगता है कि मेरी लिस्ट के सभी गाने बजने वाले हैं आज, और इसलिए मिलते हैं 1 बजे, भाई शुरू हो चुका है कार्यक्रम और देखते हैं कि आप सबकी पसंद और हमारी पसंद मिलती जुलती है। वैसे अगर आप कुछ गाने हमें सुझाएं तो हम आप वाले गाने भी बजा सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे श्रोताओं की वो पसंद होनी चाहिए। बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी लिस्ट भेजी है। एक ने लिखा है, नीले पर्वतों की धारा, दिल का भंवर करे पुकार, मैंने कहा फूलों से, वगैरह वगैरह। तो देखते चलिए कि आप वाले गाने इसमें शामिल हैं या नहीं, और हाँ, शब्द भी बताते चलिए कि इस शब्द से अभी कौन सा, किस शब्द से कौन सा गाना बजा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें प्रकृति सुंदर हवा देती है, ठंडी छांव देती है, फूल देती है, जीवन जीने का आधार देती है, इसलिए जब मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रही है। तो मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो, पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने जीवन और अपने कल को सुरक्षित रखने का सबसे सुंदर प्रयास है। बिल्कुल सही फरमाया, और इसी बहाने आप उन पुराने दिनों को भी याद करते चलिए जो जब बड़े बड़े बाग होते थे, गांव में अभी भी हैं, और उन बागों में तरह तरह के पेड़ हुआ करते थे, फूलों की वादी होती थी, फूलों की घाटी, पेड़ में आम के पेड़, जामुन के पेड़, और वो कैथा, और जो बहुत सारे ग्रामीण फल होते थे जिनके नाम भी हम आज भूल चुके हैं। तो जो आम जामुन के पेड़ ख़ास तौर से जाते थे, आप पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लेते थे या ढेला मार के फेंकते थे, टूटकर आम गिरता था, तो बाप दादे के लगाए हुए वो पेड़ के आम खाते रहते हैं। तो कभी सोचा है कि आपको भी एक पेड़ लगाना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करे जिस तरह आप अपने दादा नाना को याद करते हैं। चलिए, याद करते रहिए, और गानों से जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो डिटेल्स भी याद करते चलिए। फिल्म 2 दूनी 4, बताइए किसकी है आवाज़, किसका है संगीत और किसका है गीत।

0: दो दुनी चार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था स्वर किसका है, संगीत किसका है, गीत किसका है। किशोर कुमार की आवाज़, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत है। और कौन से शब्द के लिए ये गाना सुनवाए ये भी ज़रा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि इस गीत के गीतकार गुलजार हैं और ये मेरा पसंदीदा गाना है, अभिनेता किशोर कुमार है और बहुत पसंद है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपको देखकर फेसबुक पेज पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतनी बड़ी इबारत उसमें इतना कुछ समाया हुआ है कि इसके लिए एक घंटे का समय बहुत कम पड़ जाएगा। चलो देखते हैं हमारी प्यारी रेडियो सखी कैसे निभाती हैं। प्रोग्राम तो प्यारा होने वाला है क्योंकि एक तो आप और भी बहुत सारी बातें लिखिए भाई, तारीफ के अलावा आप वो बातें लिखिए जो पर्यावरण से जुड़ी हैं। और आप, हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई पौधा रोपा है या पौधे की देखभाल आप करते हैं, पेड़ों की देखभाल करते हैं, पर्यावरण के लिए आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं। जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, नदी के किनारे, समंदर के किनारे जाते हैं तो वहाँ एक खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं और एक दो रैपर वहीं पर फेंक के चले आते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो पानी है, नदी का पानी है, इसमें जाकर वो इकट्ठा हो रहा है। यहाँ तक कि समंदर की लहरों के साथ बहुत सारा कचरा आता है। जब हम मुंबई में किसी बीच पर जाते हैं या किसी भी समंदर के किनारे कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पर जब पैरों में पॉलीथीन अटकता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो बस ऐसे ही सोचिए कि वो जो पानी है समंदर या नदी का, उन्हें भी बुरा लगता होगा। तो साफ़ सफाई का ख्याल भी रखें। फ़िलहाल सुने ये गाना।
1: ये रातें, ये मौसम।

दिल्ली का ठग फिल्म का गाना, आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाजें, एसएच बिहारी के बोल, रवि का संगीत। अब बहुत सारे श्रोताओं ने यही बात लिखी है, अब गानों के बोल भी आए हैं श्रोताओं की ओर से, और ज़्यादातर श्रोताओं ने ये बात लिखी कि आज प्रकृति की बातें होंगी। आज की इबारत से समझ में आ रहा है भाई, अपने अनुभव साझा कीजिए, पर्यावरण से जुड़े हुए गाने साझा कीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की भीगी भागी सी, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने पंछी बनूं उड़ती फिरूं ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, हुस्न पहाड़ों का, और भी गानों की लंबी फहरिस्त भेजी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता लंबी है लेकिन बड़ी प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि घर को पृथ्वी का मित्र बनाएंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे, बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे, उपभोग की बजाय संतुलन का जीवन अपनाएंगे, क्योंकि अंततः पृथ्वी को बचाना किसी दूरस्थ अभियान का विषय नहीं है। एक श्रोता कहते हैं कि हम चाहे जितनी भौतिक दुनिया में जी लें लेकिन सुकून, शांति, शक्ति और ठहराव हमें प्रकृति के पास जाने पर ही मिलता है। बिल्कुल सही फरमाया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मुझे लगता है कि प्रकृति से बढ़कर सच्चा दोस्त कोई नहीं। ये हमें शुद्ध हवा देती है, ठंडी छांव, सुंदर फूल देती है और जीवन जीने का आधार भी। इसलिए जब भी मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रहा है। देते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है सामूहिक रूप से। चलिए अब गीत फिल्म का गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। अब गीतकार संगीतकार का नाम तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। फेनिल झरना है, सुंदर कुदरत के नज़ारे हैं, बताइए कलाकारों के नाम, हीरो हीरोइन।

0: फिनिल झरने सुंदर कुदरती नज़ारों के बीच गा रहे हैं ये गाना राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर्दे पर। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया, एक भी गलत जवाब नहीं दिखा। एक श्रोता ने लिखा है कि खेतों को काटकर उस ज़मीन पर मकान बनाए जा रहे हैं जिससे मानव और पशु पक्षी दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। और बहुत सारे श्रोता अब गानों के बोल लिख रहे हैं शब्द ढूंढ ढूंढ कर। एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें तो जुल्फ शब्द भी है लेकिन उसके गाने नहीं लिखे हैं, जुल्फ वाले गाने कौन से, ज़रा वो भी तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि धरती का श्रृंगार, पेड़ पौधे, नदी तालाब ही तो हैं, इन्हें बचाने की बजाय इनका दोहन हो रहा है। मेरे दरवाजे पर नीम और जामुन के पेड़ बड़े पेड़ हैं, गांव के 10-20 लोग हमेशा दरवाजे पर आकर बैठते हैं और जो जामुन में फल आते हैं तो हम लोग जामुन खाने तोड़ने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नीम के पेड़ पर झूले भी तो डलते होंगे, अब सावन जब आएगा, जब सावन के आने पर झूले पड़ेंगे, झूले पर फिर कजरी गाई जाएगी, वो भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ है जिस पेड़ पर झूले डाले जाते हैं, बता सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई बात। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, फिल्म है तेरे घर के सामने, बताइए कौन है इसमें कलाकार।
1: करे पुकार प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
0: गीतकार का नाम भी बताइए जरा, संगीतकार का नाम भी, कौन है हीरो।

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोलते सचिन देवबर्मन का संगीत था और तीनों सवाल के जवाब श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आए हैं। और श्रोताओं ने लिखा है देव आनंद नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इबारत में काल्पनिक पहाड़ी युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है, जहां नीले अंबर संग अटखेलियां करती, पर्वतों कलकल करती, अनवरत बहती झरनों संग सुंदर वसुंधरा की खूबसूरती का बखान है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बरसों पहले यहां पेड़ थे फल फूलों से लदे हुए, कई टहनियां थीं जो जिस पर झूले बंधे हुए थे, सब के सब कहां खो गए, लगता है लोग बहुत बड़े हो गए। क्या बात है, ये सवाल तो खुद से ही पूछना चाहिए कि ये सारे पेड़ पौधे कहां हमने कतर दिए, और अगर कट गए वो पेड़ तो हमने लगाए क्यों नहीं। ये सवाल अगर हम खुद से पूछें तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हरियाली धरती पर कायम रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति की गोद में जाना किसे नहीं अच्छा लगता, वो जहाँ पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, वन्य जीवों की अटखेलियाँ हो, प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा समय निकाल कर प्रकृति के करीब अवश्य जाएं। लेकिन ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इससे दूर जाना पड़ेगा, तब आप प्रकृति की गोद में बैठ सकते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल उठाकर देखते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं है, या फिर खिड़की खोलकर शुद्ध हवा लेते हैं, या फिर अपने गमले में लगे पौधों से बतियाते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम भी ज़रा थोड़ी क्यारी में पौधों की संख्या बढ़ा दें। चलिए ये सवाल खुद से पूछिए और अब सुनिए सेहरा फिल्म का ये गाना। किस लिए ये गाना बजाया, कौन सा शब्द है इबारत में, जरा ढूंढिए और बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। संगीतकार का नाम जरा बताइए, कौन है संगीतकार।

सेहरा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, रामलाल का संगीत था। हमने संगीतकार का नाम पूछा था, कुछ श्रोताओं ने गलत बताया है, कुछ श्रोताओं ने सही बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि प्रकृति हमें न केवल भौतिक संसाधन देती है बल्कि मानसिक शांति और आरोग्य भी देती है। प्रकृति के साथ संवाद करना हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत दृष्टिपात करने की एक क्षमता प्रदान करता है। हम प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुधा पहाड़ी लड़की का सौंदर्य सादगी, प्राकृतिक परिवेश और संघर्ष का एक जीवंत मिश्रण होता है। इनकी तुलना अक्सर खिलते हुए बुरांश के फूलों, कलकल बहती नदियों और पहाड़ों की स्वच्छ हवाओं से की जाती है। उनके रूप सौंदर्य में कृत्रिमता नहीं बल्कि प्रकृति की सहजता होती है। पर्वतीय बालाओं का पहनावा भी प्रकृति की गोद से जुड़ा हुआ होता है। रंग बिरंगे परिधान जो पहाड़ों के बदलते मौसम के अनुकूल होते हैं, इनका सौंदर्य केवल शारीरिक न होकर बल्कि परिश्रमी और संघर्षशील स्वभाव का प्रतिबिंब होता है। और आपकी इबारत से हमने इस चित्र को महसूस किया। चलिए अब आगे बढ़ें और सुने आह फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार संगीतकार का नाम ज़रा बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई ख़ास याद है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अपनी उदासी और अपना दर्द हम जोड़ लेते हैं गानों के साथ, रेडियो के साथ, विविध भारती के साथ। बहुत सारे श्रोता ये कहते हैं।

आ फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन थी। और ये हमने आपसे सवाल भी पूछा था और साथ में हमने कलाकारों के नाम भी पूछे थे कि इन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, राज कपूर और नरगिस। श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जो गाने हमें समझ में आए हैं आपकी इबारत से, वो है झूमे रे नीला अंबर, झूमे रे धरती और बारिश की बूंदें बरसने लगी ये गाना, और नील गगन की छाँव में पंछी बन उड़ जाता है। और एक गाना है एक सुनहरी शाम थी, आओ प्यार करें फिल्म का नाम, और प्यासी हिरनी बन बन धाए ये वाला गाना भी लिखा है, जो बहुत दिनों बाद इसका जिक्र आया है। और भी बहुत सारे गाने लिखे जिनमें से कुछ गाने हम आपको सुनवा चुके और कुछ गाने हमारे इस प्लेलिस्ट में हैं, लेकिन शायद वो गाने हम सुनवा नहीं पाएंगे क्योंकि एक गाना अभी और बाकी है। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यावरण दिवस है, हमें गांव, नदियां, नाले सब कुछ स्वस्थ रखना चाहिए, पर्यावरण और पर्यटन दोनों हमें इनका हाथ थाम कर चलना चाहिए, लेकिन आज जहां लोग पर्यटन को जाते हैं वहां के पर्यावरण को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। आज के सुरीले सफ़र में रेडियो सखी ने नदियां, पहाड़ इन सब का जिक्र छेड़ा है। अब देखना सुनना है कि इसमें मनोरंजन कितना होता है और संदेश कितना होता है। तो आप बताइए क्या था, हमें लगता है कि संदेश और मनोरंजन का सम्मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। सुनिए कि प्रोग्राम का आखिरी गाना।

गाने में हीरो हैं जिन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता था। नाम बताइए जरा और हीरोइन का नाम भी बताइए। हीरो और हीरोइन का नाम आपको बूझना है।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना था और हमने कलाकारों के नाम पूछे थे, साधना और जॉय मुखर्जी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना, सुरीला सफ़र। ये सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 31वीं कड़ी।

बंगाल में पद्मा और मेघना इन दो नदियों के संगम पर बसे बारिसाल शहर में कांग्रेस के युवाओं का अधिवेशन 14 और 15 अप्रैल 1906 को आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के लिए अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, भूपेंद्रनाथ बसु, मोतीलाल घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे अनेक नामी गिरामी नेता आने वाले थे। अश्विनी कुमार दत्त की पहल से इस अधिवेशन में हजारों युवक बड़े उत्साह से शामिल होने के लिए बारिसाल की ओर आ रहे थे। अश्विनी कुमार दत्त कवि भी थे। बारिसाल के इस अधिवेशन के लिए उन्होंने विशेष रूप से एक कविता रची थी, आए रे सब भारतवासी, आए सब मिले, प्रणामी भारत माता चरण।

आओ सब भारतवासी आओ, सब मिलकर भारत माँ के चरणों में शीश नवाओ। आओ आओ मुसलमान भाइयों, आज जाति पाति का कोई झगड़ा नहीं है, मिलकर करें वो कार्य जो सही है। इसी धूल में है श्री राम हमारा और इसी धूल में है अकबर तुम्हारा। बंग भंग विरोधी आंदोलन के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के लिखे गीत लोग गाने लगे थे।

अपनी एक और कविता में अंतिम पंक्ति में वंदे मातरम शब्दों के साथ वे लिखते हैं, भैया देश का ये क्या हाल, खाक मिट्टी और जौहर होती सब, जौहर है जंजाल, बोलो।

0: अधिवेशन विस्फोटक होगा इसका अंदाजा लगते ही बंगाल के गवर्नर फुलर ने इस अधिवेशन को दबा देने के लिए बड़ी तैयारी शुरू की। सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने और वंदे मातरम बोलने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अगर यह पाबंदी तोड़ी गई तो पूरा अधिवेशन रद्द करवा देने की धमकी भी उसने दी। पूरे शहर में एक बड़ी गोरखा पलटन तैनात कर दी। एक दिन पहले ही नियोजित अध्यक्ष अब्दुल रसूल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, भूपेंद्रनाथ बसु और हिरेंद्रनाथ दत्त नाव से बारिसाल आए। वंदे मातरम पर पाबंदी के कारण प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत शांतिपूर्वक किया।
1: वंदे मातरम पर पाबंदी यानी लड़ाई से पहले ही हाथों से हथियार छीन लेने जैसा था। युवा तो बेहद क्रोधित हो गए, मगर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कानून के जानकार होने के कारण उन्होंने युवकों को शांत किया। स्वयं कृष्ण कुमार मित्र सचिंद्रनाथ बोस भी बहुत नाराज हुए और वे बोले,
2: वंदे मातरम पर पाबंदी है तो हम इस सम्मेलन में भाग ही नहीं लेंगे।
1: अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष तो बोले,
3: मैं तो वंदे मातरम गाऊंगा ही, चाहे इसके लिए सिर कट जाए तो भी चलेगा, इस सिर की कीमत वंदे मातरम से बड़ी नहीं है।
1: बिपिन चंद्र पाल, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, कवि काली प्रसन्न विशारद आदि मान्यवर भी बारिसाल पहुंच चुके थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को समझाया। वे बोले,
4: जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सम्मेलन स्थल पर यह पाबंदी नहीं है। सम्मेलन सुचारू रूप से होने के लिए यहां के नेताओं ने अगर प्रशासन को वचन दिया है तो हम सभी को उसका पालन करना चाहिए।
0: परंतु यह सब तूफान से पहले की शांति थी। 14 अप्रैल का सूरज निकला और वंदे मातरम के बिल्ले लगाए हुए प्रतिनिधि, हजारों लोग जुलूस के रूप में राय बहादुर की हवेली से सभा स्थल की ओर निकले। माहौल का तनाव कुछ हद तक दूर हुआ। जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी होने के बावजूद यह पाबंदी जानबूझकर तोड़नी है ऐसा सभी ने तय किया था। पुलिस लाठीचार्ज या गोलीबारी करेगी, शायद रक्तपात भी होगा। इसका एहसास होने के उपरांत लोग निडर होकर सड़कों पर उतरे थे।
1: आम लोगों से लेकर लोकप्रिय नेताओं तक सभी एक ही भावना से जुलूस में शामिल हुए। इस अधिवेशन के नियोजित अध्यक्ष बरिस्टर अब्दुल रसूल सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इस जुलूस के आगे पैदल चल रहे थे। जुलूस में युवकों ने उत्साहपूर्वक वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए, मगर पहले से ही जो तय था उसके अनुसार फुल्लर के आदेश पर गोरखा पलटन ने निहत्थे भीड़ पर हमला कर दिया।
0: इस हमले के लिए फुल्लर ने उन्हें 6 फुट लंबी एक मोटी लाठी दी थी। यह रेगुलेशन लाठी अंग्रेजों के बारिसाल में दमन का प्रतीक बन गई। दोपहर 2 बजे यह जुलूस निकला और यह जुलूस ठीक से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही जुलूस के पिछले हिस्से की तरफ से फुलर की सेना ने हमला कर दिया। बहुत कठोरता से इस लाठी के वार आंदोलनकारियों पर होने लगे। लाठी की मार के साथ वंदे मातरम का घोष और भी बड़ा होता गया। उसके साथ ही मागो जाए जन जीवन चले यह गीत भी लोग ऊंचे स्वर में गा रहे थे।
1: पुलिस के निर्दय लाठी चार्ज से फणीन्द्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन गुह ठाकुर, अरविंद बाबू, मोतीलाल घोष, सुरेंद्रनाथ, भूपेंद्रनाथ दत्त कोई भी नहीं बच सका। सबका शरीर लहूलुहान हो गया। पुलिस अधिकारी कैंप खुद लाठीचार्ज में सबसे आगे था। कृष्ण कुमार मित्र ने कैंप से कहा,
4: आप अपनी पुलिस को रोकिए, नहीं तो आपके सामने इससे भी कठिन चुनौतियां खड़ी होंगी। अपनी पुलिस को रोकना आपका कर्तव्य है।
1: कैंप ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया,
2: मेरा ड्यूटी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपके सलाह का जरूरत नहीं है।
1: पर कुल मिलाकर घटना की गंभीरता समझकर उन्होंने लाठीचार्ज बंद किया और आसमान में बस दो ही शब्दों की गूंज बार बार आती रही।

सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम, एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 31वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई

0: ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदम द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। SOCHM के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
4: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2,00,00,000 से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
5: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
6: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
7: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं।
8: लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया।

0: अन्नामलई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत वासना फिल्म के गाने से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। साहिल लुधियानवी के बोल।

0: शैलेंद्र का लिखा गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। इंदिवर के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था, फिल्म थी ताजमहल। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जब हम किसी से मिलते या बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। वो एक छोटी सी मुलाकात अक्सर ताउम्र के लिए हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाती है। बेपरवाह अल्हड़ सवालों और जवाबों से परे होती है ये मुलाकात। कई बार तो रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती जो एक छोटी सी मुलाकात से बने दोस्त से हो जाती है। इन छोटी छोटी मुलाकातों से ही रिश्ते उम्र दराज होते हैं। तो हाँ, मुलाकातों का सिलसिला चलते रहना चाहिए और हर मुलाकात के लम्हों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों की यादों से पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। तभी तो हमें भी रहता है ना इस छोटी सी मुलाकात का इंतजार, जो हेलो सहेली के माध्यम से हमें हमारी सखियों से मिलवाती है और दे जाती है यादों में सहेजने वाले ढेर सारे खूबसूरत पल। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर।
1: हेलो
0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मैं भावना बोल रही हूँ, बिहार से, हरियाणा से।
0: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं घर से ही अपना बुटीक है मेरा, सिलाई करती हूँ।
0: यानी आपका बढ़िया कपड़ों का है ना?
1: हाँ जी।
0: तो इस समय अच्छा चल रहा है?
1: हाँ जी।
0: आप महिलाओं के कपड़े केवल बनाती हैं या सब मिक्स?
1: हाँ जी, महिलाओं के बनाती हूँ मैम, बच्चों के और महिलाओं के, सारी गारमेंट्स बनाती हूँ मैम।
0: बहुत अच्छी बात है, आप अपना खुद का काम कर रही हैं। और बताइए, हाँ, आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहूंगी आज तेरा मेरा साथ है फिल्म का, तेरा मेरा साथ है।
0: बहुत प्यारा गाना है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से?
1: स्वाति सिंह बोल रहे हैं, मनकापुर गोंडा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी अच्छा, तो आप बताइए अब कि आप क्या कर रही हैं?
1: मैम हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, आईटीआई कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और तो आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
1: हाँ मैम बहती है, लेकिन इस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, तो कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा है, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
0: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने का?
1: मैम मिल जाता है। मैम आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: बधाई हो आपको बहुत ज्यादा। और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए। और आप अपने पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।
1: मैम मूवी का नाम है इज्जत और गाने की बोल है क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिक्र छिपी रहे।
0: अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छा गाना है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन बोल रहा है?
1: बरगढ़ जिला उड़ीसा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का कामकाज करती हूँ और सभी कार्यक्रम सुनती हूँ, आकाशवाणी के सभी केंद्रों के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं?
1: पढ़ाई तो खत्म है, मेरे कब से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हूँ जी।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया है, तो
0: हाँ।
1: उनकी याद में एक गाना सुनेंगे। उनकी आवाज में तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं, मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद में दे दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ प्यारा।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा ललिता जी इंदौर से बोल रही हैं, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत।
0: बढ़िया।
1: और दिन में धूप में तो निकलना,
0: ये तो बहुत अच्छा।
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो फिर डॉक्टर जाना।
0: हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो सब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे

0: पीछे भागो, और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो
1: आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है मेरी।
0: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना के देती हैं?
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उसको थोड़ा कम समय दे पाते हैं, वो सुबह 9 बजे निकल जाता है।
0: अच्छा,
1: तो रात को आता है 9 बजे।
0: अच्छा,
1: छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं घर में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं, क्या अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है, कसम क्या होती है, जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए।
0: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से?
1: मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ, मैं उज्जैन से।
0: अच्छा रेखा जी बोल रही हैं उज्जैन से, तो बताइए रेखा जी आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की है मेरी और एक बेटा है, अभी बेटे की शादी हुई है।
0: अरे वाह, यानी आप भी सासू माँ बन चुकी हैं ना?
1: जी मैम, अभी 2-3 महीने हुए।
0: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ है, कड़क वाली की अच्छी वाली?
1: नहीं नहीं नहीं
0: नहीं नहीं, आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मैम हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है और शाम की टाइम तो हम रोज घूमने जाते हैं, मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
0: चलिए इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना तो समझिए फिर तो आप थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी थोड़ा बहुत रहता है ना वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत बहुत ही अच्छा आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
1: मैम अच्छा लगता है उनके साथ, और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है, घर पे बहू आ गई तो टेंशन फ्री है थोड़ा।
0: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की सास हैं।
1: बिल्कुल,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है।
0: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी, तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से।
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवारें हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी
1: तो संभालना जरूरी है ना, घर में तो सब
0: बिल्कुल,
1: मैंने सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है।
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे हैं, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी।
1: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ
0: जी। तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं।
1: सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना, सुबह से मेरा रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता, भूले बिश्री संगीत सविता, भूले बिश्री गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता, सुन किचन में चलता रहता, मैं काम करती रहती हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है ये। संगीत में अगर रुचि है ना आपकी, तो समझिए आपका जीवन बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ, और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है।
0: ये अच्छी चीज है।

0: में पेड़ लगता फल लगते रहे कि मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो हमारी हमारी जीवन देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: गाना सुनूंगी गागो साइड खान का, नाचो तू बंसी बजा। हाँ
1: जी बिल्कुल, सुनवाती हैं आपके पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में हो चला है समय एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ
0: जी।
1: पूर्णिमा सरगम, अभी तेलंगाना में रह रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: गाना सुनती रहती हूँ।
0: आप बताइए क्या करती हैं आप?
1: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
0: कितना छोटा है आपको बच्चा?
1: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओहो, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
1: वो ज्यादा नहीं कर पाती पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी।
1: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती,
0: यानी अच्छी बच्ची है।
1: हाँ।
0: जी तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है?
1: डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
0: तो आप अपना डांस करती हैं या ऐसी अपनी मतलब अभी आप छोड़ रखा है इस समय?
1: अभी ये छोटी है

0: दे छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
1: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
0: जी, मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
1: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताज़ा रखती, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती, क्योंकि हम इतने ज़्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो
0: बीमारी सही कर दे, डांस और म्यूजिक तो ऐसी चीज़ है।
1: जी, एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
0: हाँ, फिट भी रहते हैं बहुत।
1: जी, तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
0: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
1: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है। तो उसको सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: जी।

0: काम करती रहती है और सब पूरे फैमिली पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके पर निर्भर होती है
1: और ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए
0: बिल्कुल
1: जो है।
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे हैं, बहू है, पोती है।
0: बहुत बढ़िया। तब तो आप पोती के साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से।
1: जी जी जी
0: जी। तो बताइए जी, तो आप बताइए, आपको पेड़ पौधों का शौक है?
1: जी बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है, मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते हैं।
0: अच्छा अच्छा, आपने लगा रखे हैं?
1: हाँ लगा रखे हैं, और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। गर्मियों के दिन में सोचिए वो चिड़िया पक्षी उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया, बहुत अच्छी बात है ये।
1: और साथ सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है।
0: वही तो, हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना, तो वो भी तो बदले में हमें अपनी चहचहाट देती हैं, अपनी खुशियां देती हैं ना।
1: तो बिल्कुल आती हैं, सब खेलती हैं,
0: जब वो चहचहाती हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियां बिखर जाती हैं, है ना। तो आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभिमान फिल्म का गीत है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
0: बहुत अच्छा गीत है ये, और सुनवाते हैं आपको ये आपके पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी। तो आप बताइए पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निको से है। मैं
0: तो आप कहाँ से हैं?
1: चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वरोरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ मैडम।
0: अच्छा,
1: घर में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ मैं।
0: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको
1: मुझे
0: बहुत
1: गाना सुनना अच्छा लगता है।
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना गाना अच्छा लगता है?
1: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है।
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: मुझे जाग्वर फिल्म में का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
0: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है, तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ओडिशा गंजाम जिला से बोल रही हूँ।
0: जी, आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियाँ हैं।
0: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी है कि छोटी है?
1: हाँ, बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की।
0: अरे वाह,
1: बीएससी नर्सिंग की।
0: बहुत अच्छी बात है, यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना? जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है? तो
1: मुझे सिलाई आती है, तो मैं कभी खाली नहीं रहती, काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती।
0: बहुत अच्छी बात है ये, आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या ना हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है। लेकिन आपने उस चीज़ को अच्छे से किया है। तो आप क्या क्या चीजें सिल लेती हैं?
1: खुशी हो रही है कि आज सखी सहेली पर मेरी फोन लगी। तो June 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जो June 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है।
0: अरे वाह, जून में ही है दोनों बेटियों का बर्थडे।
1: हाँ हाँ, और मेरी बहन की बेटी के June 4 में है।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा।
1: कुछ हैप्पी बर्थडे की गीत सुनाई देंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़े और आपका नाम रोशन करें। तो आपने बताया कि आप सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर देती हूँ।
0: अच्छा, सारी चीजें आप सिल लेती हैं। तो आपको बाहर के सिले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: वो जो सुजाता फिल्म का गीत है ना।
0: सुजाता का कौन सा?
1: हजारों साल।
0: अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको पसंद का ये गीत।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी तो कामयाब होते ही हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े, और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूँ बस, माँ ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि माँ ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर, शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कह कर गई हैं पता है? कह रही थी जो हुकुम, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है और तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूं? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है, भावना हंसकर कहने लगी। बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा। मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किराएदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। 2 दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई जैसे मेरी बुराई कर रही हूँ और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ तुम खाना लगाओ। लो मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती है? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं। अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती है। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है। वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है। प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है, अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आई, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थी। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना, या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है, संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ, आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में, संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा, और दोनों खिलखिला पड़े।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थी, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थी। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटा कर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी, मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी आप इतनी सुबह, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया, ठीक है तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ, मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी, वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव, जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहे और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूँ पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल, शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी, और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी, चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी, इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी, कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही

0: आप खुश है ना?
1: भाभी आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ। आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना अब तुम मुझे सिखा देना। साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी। भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है, मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आई। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे। अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

0: भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं,
2: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
2: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो

0: वाह, है ये लगता मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
3: अब विविध भारती के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 5 बजे आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर गोठ।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये गर्जंडी, सिंघरा, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, भगवानपुर, नवापारा, इकनारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगरनाथपुर, डांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, तपकरा और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या ये सामहर सिंघा, नागदरहा, सोखामुड़ा, बोजिया, बुरुंगा, बनहर, औरानारा, बेहरामार, लोटान के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये ताल दादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजय, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों

0: अभी आप सुनते प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए आपको बता दें आज की शाम प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर पश्चात यानी शाम 5:10 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। चित्रपट संगीत आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं आज शाम 5:30 पर। हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे आज शाम 6:00 से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार होंगे आज शाम 6:10 पर। आपके फोन कॉल्स पर आधारित फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए के पहले भाग का प्रसारण आप सुन सकते हैं आज शाम 6:20 पर। इस कार्यक्रम का दूसरा और शेष भाग सुनिएगा आज शाम 7:00 से। समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे आज शाम 6:45 पर। किसान भाव का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण सुनिएगा आज शाम 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा इस मास के पशुपालन कार्य। साथ ही सुनिए क्रम कृषक प्रश्न, आज का मौसम, आज का मंडी भाव और आज के किसान को। हमारे गीत आज रात्रि 8:20 पर, फिर रात्रि 8:30 पर। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे आज रात्रि 8:45 पर। हम आप तक पहुंचाएंगे आज रात्रि 9:00 से। करण 3 पर विशेष कार्यक्रम सुनेंगे आज रात्रि 9:25 पर। हम 10:00 से फिर आप सुन सकते हैं आज रात्रि 10:30 पर। तो इतनी जानकारी आज के साधिकारण प्रसारण सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों की।
1: आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम 5:10 में आइए सुनते हैं संगीत कार्यक्रम भजन संध्या। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की आवाज में गाए कुछ भजनों को।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात, अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्टकार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।

अभी आप सुने थे जगजीत सिंह के गाए कुछ भजनों को। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत का प्रसारण। कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनाते हैं फिर पम पम से गाए ये गीत। गीत विशाल शेखर का है।

0: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: आकाशवाणी एट 90 की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

करते हैं मंगेशकर की आवाजों में गाया फिल्म लवर्स का एक गीत हमारा है आर डी बर्मन ने।

लवर्स फिल्म को गीत अभी आप सुन रहे थे अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। हमें बच्ची के लिखे बोलों को संगीत से संवारा था राहुल देव बर्मन ने, और इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। तो हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल

0: पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपुरती ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए, आइए आपको बता दें आज की शाम प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर पश्चात यानी शाम 6:10 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आपके फोन कॉल्स पर आधारित फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए के पहले भाग का प्रसारण आप सुन सकते हैं आज शाम 6:20 पर। इस कार्यक्रम का दूसरा और शेष भाग सुनिए आज शाम 7 बजे से। प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे आज शाम 6:45 पर। किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण सुनेगा आज शाम 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा इस मास के पशुपालन कार्य। साथ ही सुनिए क्रम आज का टीप, कृषक प्रसमंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। इसके अलावा सुनिए क्रम आज की नसीहत के अंतर्गत चर्चा, जिसका विषय होगा भंडारण कर अनाज को कीटों एवं चूहों से बचाए। हमारे केंद्र से सुनेगा गैर फिल्मी गीत आज रात्रि 8:20 पर। फिल्मी गीत सुन सकते हैं आज रात्रि 8:30 पर और रात्रि 10:30 पर। समाचार संध्या का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे आज रात्रि 8:45 पर। सीधा अनुप्रसारण आप तक पहुंचाएंगे आज रात्रि 9 बजे से। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर महिला सशक्तिकरण थीम पर विशेष कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज रात्रि 9:25 पर। विभिन्न संगीतकारों लीजिएगा आज रात्रि 10 बजे से। फिल्मी गीतों कार्यक्रम रजनीगंधा आपके लिए कराएंगे आज रात्रि 10:30 पर। तो ये थी जानकारी आज के सांधिकरण प्रसारण सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों की।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
8: देश की सुरीली धड़कन
7: विविध भारती, भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
8: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
7: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
8: वीर सैनिकों की जयमाला
7: और हंसी का हवा महल, 22 करोड़ की बातें यादों के उजाले,
8: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
9: सखी सहेली,
8: बॉम्बे टॉकीज और
10: सेल्यूलॉइड के सितारे,
8: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
9: मुझे याद सब है
11: जरा
7: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
8: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
7: मन का सुकून दिल की आरती
8: सुरीली संदली।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
12: समाचार होंगे। ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग रामेश्वरी बघेल के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। आज विश्व पर्यावरण दिवस आए ये मौका मा देश भर में करे जावा थे आने आने कार्यक्रम के आयोजन। मुख्यमंत्री है आज पंजीकृत निर्माण श्रमिक मन के 10वीं-12वीं के 22 जन पढ़िया लैका मन ला सम्मानित करीन। और छत्तीसगढ़ में 12 जून तक मानसून अमरे के संभावना। अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश में एक दो जगह हल्का ले मध्यम वर्षा हो सकत है। अब समाचार विस्तार ले। आज विश्व पर्यावरण दिवस आए ये मौका मा देश भर मा आने आने कार्यक्रम के आयोजन करे जावत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतकोन केंद्रीय मंत्री मन विश्व पर्यावरण दिवस के शुभकामना देन है। ये मौका मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हकीन है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसन पहल हा हर बछर लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाए मा महत्वपूर्ण योगदान दे है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी है कहीन कि आज के दिन हा पर्यावरण संरक्षण और सरलक विकास ला बढ़ावा दे के प्रतिबद्धता ला व्यक्त करे के प्रतीक आय। एति प्रदेश में घलो आने आने कार्यक्रम के आयोजन करे जावत है। राज्यपाल रमेन डे कहा रायपुर के लोक भवन और नवा रायपुर में निर्माणाधीन लोक भवन परिसर में वृक्षारोपण करीन। ये मौका में ओमन लोगन ले ज्यादा पेड़ पौधा लगाए और पर्यावरण ला सुरक्षित रखे के अपील करीन है। उहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग डहर ले रायपुर के राजीव स्मृति वन मा प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम ऊपर आयोजित कार्यक्रम मा शामिल हुईन। ये मौका मा उमन एक पेड़ माँ के नाम अभियान के शुभारंभ करीन और प्रदेशवासी मन ले घलो एक ठन पेड़ माँ के नाम लगाए बर अपील करीन। इही बेरा वन मंत्री केदार कश्यप फकीहीन कि छत्तीसगढ़ हा अपन समृद्ध वन संपदा जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन के सेती देश के समृद्ध राज्य आए। राज्य सरकार हा पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास ला सर्वोच्च प्राथमिकता देवत सरलग कार्य करत है। श्री कश्यप बतैन कि राज्य मा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पाछू 2 बछर मा करोड़ों पेड़ लगाए गए है। ये अभियान हा एक ठन बड़े जन आंदोलन के रूप ले चुके है। उहे रायपुर में स्कूली लैका मन वन्य प्राणी की वेशभूषा में धारण करके रैली निकालीन और पर्यावरण संरक्षण के संदेश दीन। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल डहर ले रायपुर में ही एक ठन कार्यक्रम आयोजित होइस जेमा पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षक मन के प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेगीस। एकर अलावा विश्व पर्यावरण दिवस के मौका में आज प्रदेश के आने आने ग्राम पंचायत में घलो विशेष ग्राम सभा के आयोजन करेगीस। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हा प्रदेश के शराब फैक्ट्री ले निकलैया जहरीला पानी ले नदिया मन के प्रदूषित होय ऊपर नाराजगी जताई से। मुख्य न्यायाधीश के डिवीजन बेंच हा ये मामला के सुनवाई करत 2 जन अधिवक्ता मन ला कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करे है। उन्हें कोर्ट कमिश्नर मन प्रदेश के 3 ठन शराब डिस्टलरी यूनिट के संयुक्त निरीक्षण करी और अवैया 30 दिन के भीतर अपन रिपोर्ट सौंपी। ये मामला के अगला सुनवाई 6 जुलाई के होही। उप मुख्यमंत्री अरुण साव हकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 बछर देश के विकास सुशासन और जन कल्याण के रहे है। ये दौरान देश हर क्षेत्र में कतकोन उपलब्धि हासिल करिस। श्री साव आज रायपुर में पत्रकार मन लेगोट बात करत बतैन कि केंद्र सरकार के उपलब्धि और जन कल्याणकारी योजना मन लेके आज ले 21 जून तक महाजन संपर्क अभियान चलाए जाही। भाजपा कार्यकर्ता मन घर घर जाके जनसंपर्क और हितग्राही मन ले संवाद करही। एकर अलावा प्रदर्शनी और जन जागरण कार्यक्रम घलो आयोजित करे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
13: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता।

0: आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगु बाढ़थन बाचे समाचार कोती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज श्रम विभाग डहर ले आयोजित मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह में शामिल होइन। ये कार्यक्रम रायपुर में होइस। ये मौका में मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के मेरिट सूची में टॉप 10 में जगह बनैया पंजीकृत निर्माण श्रमिक मन के 22 जन छात्र छात्रा मन ला मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत 2-2 लाख रूपया के प्रोत्साहन राशि दे के सम्मानित करीन। यमा कक्षा 10वीं के 9 और 12वीं के 13 जन विद्यार्थी शामिल हैं। ये विद्यार्थी रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, गरियाबंद, शक्ति, बलौदाबाजार, रायगढ़ और कांकेर के संग आने आने जिला के हैं। मुख्यमंत्री है सम्मानित विद्यार्थी मल्ला बधाई देवत की ही कि उखर सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं भलुक श्रमिक परिवार के संघर्ष, परिश्रम और संकल्प की प्रेरक कहानी है। सुनैया मल्ला बता दें कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में ये दारी विश्व पर्यावरण दिवस के मौका में अंबिकापुर में संचालित गार्बेज कैफे के संचालक रितेश सैनी ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एकर प्रसारण काली 6 जून के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहर ले FM और प्राइमरी चैनल में बिहेनिया 9 बजे करे जाही। एला छत्तीसगढ़ की जम्मू आकाशवाणी केंद्र एक के संग्रह रिले करही। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय के 4वां दीक्षांत समारोह में शामिल होइन। जी हां, आने आने संकाय के 9000 ले ज्यादा विद्यार्थी मल्ला उपाधि प्रदान करेगी। इमले 7500 ले ज्यादा स्नातक, 1500 ले ज्यादा स्नातकोत्तर और 5 सुपर स्पेशलिटी उपाधि देगी। वहीं आने आने संकाय में सबले ज्यादा अंक पवैया विद्यार्थी मल्ला स्वर्ण पदक प्रदान करेगी। कार्यक्रम ला संबोधित करत राज्यपाल हकीन कि डिजिटल एडिक्शन आज के सबले बड़का समस्या में एक है। यह सिर्फ मन के नहीं भलुक पारिवारिक और सामाजिक जीवन ला घलो प्रभावित करते। नवा पीढ़ी ला एकर ले बाहर निकले के जरूरत है। वहीं मुख्यमंत्री हकीन कि आज के दिन हा सिर्फ उपाधि पाए के दिन नहीं है भलुक समाज और मानवता के प्रति नवा दायित्व के निर्वहन बर संकल्प ले के मौका आए। विद्यार्थी मन के सफलता उखर व्यक्तिगत उपलब्धि के संगे संग छत्तीसगढ़ के प्रगति और विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठा लघलो दर्शाते। इति कार्यक्रम ला स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हघलो संबोधित करीन। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप अपन निवास कार्यालय में वर्चुअल माध्यम ले प्रदेश में हाथी संरक्षण मनखे और हाथी के संघर्ष ल कम करे के मनसा ले आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के शुभारंभ करीन। ये मौका में श्री कश्यप बतायन कि हाल बेरा हाथी मन के विचरण सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर और दुर्ग संभाग के कतकुन इलाका में बगरे है। ऐसन में हाथी संरक्षण के संगे संग प्रभावित इलाका में रहिया लोगन के सुरक्षा करना घलो जरूरी है। मंत्री बतायन कि बछर 2022 में करीबन 240 हाथी रिहिन, जिकर संख्या बाढ़ के बछर 2026 में करीबन 450 हो गए है। यह वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में बड़का उपलब्धि आए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है प्रदेश में एक के दिन आयोजित होया 2 ठन परीक्षा के तिथि में बदलाव ले इनकार कर दे है। 1 ठन याचिका के सुनवाई करत न्यायालय है कि हीस की DLED के परीक्षा साल में 2 घाव आयोजित करे जाते। एकर सेती परीक्षार्थी मन के तीर अवैया परीक्षा में शामिल होए के विकल्प सुरक्षित है। ऐसन में जम्मू परीक्षा प्रणाली के कार्यक्रम में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होही। मौसम विभाग की जानकारी ले दक्षिण पश्चिम मानसून 12 जून तक छत्तीसगढ़ अमरे के संभावना है। बता दें कि अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश में 1-2 जगह हल्का ले मध्यम वर्षा हो सकत है। उन्हें कुछ एक जगह गरज चमक के संग गाज गिरे के घलो चेतावनी दे गए है। और आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फेर। आज विश्व पर्यावरण दिवस आए ये मौका में देश भर में करे जावा थे आने आने कार्यक्रम के आयोजन।

0: मुख्यमंत्री है आज पंजीकृत निर्माण श्रमिक मन के 10वीं 12वीं के 22 जन पढ़िया लैका मन ला सम्मानित करीन और छत्तीसगढ़ में 12 जून तक मानसून अमरे के संभावना और यह 24 घंटा के दौरान प्रदेश में एक दो जगह हल्का ले मध्यम वर्षा हो सकत है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम 20 मिनट हुए, आइए सुनते हैं आप कार्यक्रम, लीजिए फिर सुनिए कि पहला प्रसारण।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायगढ़ और मैं हूं रजनी, आपकी दोस्त एंड होस्ट। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के स्पेशल फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए में। श्रोताओं, पर्यावरण केवल पेड़ पौधों तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और स्वस्थ वातावरण हमारे बेहतर भविष्य की कुंजी है। आज है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। इस अवसर पर हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए स्पेशल फोन इन प्रोग्राम। आज के इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण विषय पर हमारे श्रोताओं से जानेंगे उनके विचार। तो आइए शुरू करें स्पेशल फोन इन कार्यक्रम का सुहाना सफर FM रायगढ़ पर।
3: हेलो, कार्यक्रम है लीजिए फिर सुनिए।
4: नमस्ते।
3: नमस्ते, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: मेरा नाम बजरंग है मैडम जी, और हम लोग ग्राम दुर्घटना से बात कर रहा हूँ, बजरंग बजरंग से।
3: अच्छा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय करते हैं आप?
4: मैं तो हर साल पेड़ लगाता हूँ मैडम जी, जितने का अभी तो नीलगिरी का पेड़ ला कर लगाया हूँ, अभी आगे और ला कर लगाने वाला हूँ, मैंगो का प्लांट लगाने वाला हूँ और लीची का प्लांट लगाने वाला हूँ। मेरा तो यही काम कर रहा हूँ
3: जी, यानी प्लांटेशन का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ये जानकर, और बताइएगा अपनी फरमाइश, कौन सा गाना सुनिएगा आज?
4: मेरा जी एक पिक्चर है कि दिल का क्या था, तो फिल्म का सुना दीजिएगा।
3: इस फिल्म से कौन सा गाना सुनिएगा?
4: आज की में हर आदमी हो जाता है मजबूर वाला गाना।
3: अच्छा, लीजिए फिर पूरी हो रही है आपकी ये खूबसूरत सी फरमाइश। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे हम। धन्यवाद।

0: हेलो, प्रोग्राम है, लीजिए फिर सुनिए।
1: हेलो,
0: हेलो,
1: मेरा नमस्ते।
0: नमस्ते, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं दरभंगा से बात कर रही हूँ। मेरा
0: जी गायत्री जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका फोन इन कार्यक्रम, लीजिए फिर सुनिए। मैं
1: एक दो माली का गाना सुना दीजिएगा।
0: कौन सा गाना?
1: तो कर रहे कि परी नहीं है मेरी माटी डंडे, ये वाला गाना सुना दी।
0: और पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है?
1: तो लगा रहे हैं मैडम, अभी फसल आप लगाने का तैयारी कर रहे हैं।
0: जी अच्छा, इस तरह से पर्यावरण को संरक्षित करने की कोशिश की जा रही है, पूरी हो रही है। आपकी ये फरमाइश फोन इन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ये पर्दा

0: हेलो, कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
1: हाँ नमस्ते जी,
0: नमस्ते, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं मुकेश कुमार सड़कार बोल रहा हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मुकेश जी, फोन इन प्रोग्राम लीजिए फिर सुनिए। मैं बताइए कैसे हैं आप?
1: मैं टीचर हूँ और 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ।
0: जी आप पढ़ाते हैं, तो आप बच्चों को ये बताते हैं कि पर्यावरण संरक्षण आज के डेट में क्यों जरूरी है?
1: हाँ बिल्कुल बताते हैं, वातावरण को शुद्ध रखने के लिए और प्लस क्या कहते हैं बीमारियों से बचाव के लिए, क्योंकि अगर वातावरण शुद्ध रहेगा तो जो बीमारी होती है वो नहीं होगी, इस तरह की जानकारी हम देते हैं।
0: जी और स्कूल में इस तरह की गतिविधि शामिल करते हैं, तो कौन कौन सी गतिविधियों को आप शामिल करते हैं स्कूल में?
1: अब स्कूल में जैसे गतिविधि की बात है, तो हम लोग खुद बच्चों की एक टीम बनाते हैं, उनसे बोलते हैं कि चलिए स्कूल में आप लोग पेड़ लगाइए और पेड़ों को पानी दीजिए।
0: अच्छा, इसके अलावा ये भी हम कर सकते हैं, उनको प्लास्टिक जो है उसके इस्तेमाल को कम करने के उपाय बता सकते हैं और प्रदूषण को कम करने की भी बात की जा सकती है।
1: हाँ ये भी हम लोग बताते हैं।
0: जी जानकर खुशी हुई हमें, अब बताइए कि अपनी खूबसूरत सी फरमाइश।
1: हाँ मुझे आप सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम साथ साथ और गाना है ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो तो पहले आके बोल तेरी नजर तेरी नजर। ओहो
0: लीजिए फिर सुनिए अपनी पसंद पर ये नगमा, फोन इन में शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: हेलो, कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार, क्या नाम है, किस जगह से बात कर रहे हैं?
1: मैं सुरेश कुमार सारथी बोल रहा हूँ मैम।
0: अच्छा, आपके पत्र हम तक आते रहते हैं।
1: जी मैम, जी मैम, हम तो 40 वर्षों से सभी कार्यक्रम सुनते हैं, सभी आकाशवाणी सुनते हैं, सभी
0: क्या बात है। अच्छा, आपका फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है रायगढ़ FM का?
1: कॉल इन फरमाइश बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: अच्छा।
1: क्योंकि बार बार के श्रोताओं से उनकी जानकारी, उनके काम काज के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में हमको उचित जानकारी मिल जाता है।
0: जी जी, श्रोताओं से हमारा इंटरेक्शन हो जाता है, ये आपको पसंद है। चलिए, जानकर अच्छा लगा। सबकी अपनी अपनी पसंद है, और बताइएगा अपना पसंदीदा गीत।
1: मेरी पसंदीदा गीत है मैम, जीने की राह का है मैम।
0: इस फिल्म का कौन सा गाना?
1: मोहम्मद रफी की आवाज में है, जीने की राह।
0: हाँ,
1: आने से उसके

0: आप ने क्या खूब गुनगुनाया। और जहाँ पर बाहर की बात आती है, हमें ऐसा लगता है जहाँ प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या आपने कभी पौधरोपण किया है अपनी लाइफ में?
1: जी किया ना मैम, किया है, कम से कम 10-15 पेड़ लगाए हैं, ऐसी बात नहीं है, तालाब के पार में जी लगाए हैं मैम। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो बरसात आने वाली है, उस बरसात एक एक करके कम से कम अधिक से अधिक पेड़ लगाने की चिंता करें, जितने भी हमारे श्रोता जन संजीवन सज्जन है।
0: अच्छा,
1: और इससे क्या होगा मैम कि आगे भविष्य में ना इतनी जो गर्मी हो रही है, जल की जो संकट हो रही है ना, भविष्य में नहीं होगा मैम।
0: जी, इसके लिए जल संरक्षण के उपाय करें तो बेहतर होगा।
1: जी मैम, और पानी की जो किल्लत है ना, पानी के दुरुपयोग ज्यादा ना करें, जितना इच्छा अनुसार पानी फसला सुरक्षित करें। और अभी भीषण गर्मी है मैम, तो अधिक से अधिक किए ताकि शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे। और अपनी अपनी सेहत के ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, खान पान में ध्यान देना भी बहुत जरूरी है मैम, क्योंकि भीषण गर्मी है।
0: चलिए, आपसे बातचीत करके हमें अच्छा लगा। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर ये गाना। फोन इन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपकी पूरी उम्मीद को।
0: जी।

0: हमारी बेड़ियां, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। रायपुर केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। घर सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के मेधावी बच्चों को आज किया सम्मानित। रायगढ़ पुलिस ने 2 वाहनों से करीब 1.5 करोड़ रुपए का गांजा बरामद कर 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून

0: को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। इधर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल रमन डेका ने रायपुर स्थित लोकभवन और नवा रायपुर स्थित निर्माणाधीन लोकभवन परिसर में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा रायपुर के राजीव स्मृति वन में प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से माँ के नाम पर एक पेड़ लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष अभियान के तहत 2.5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि सब अपनी माँ के नाम से एक पेड़ अवश्य लगाएं।
0: इस बीच वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि राज्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पिछले 2 वर्षों में करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं। ये अभियान एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। वहीं रायपुर में स्कूली बच्चों ने वन्य प्राणियों की वेशभूषा धारण कर रैली निकाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पेड़ मत काटो का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रायपुर में ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षकों का प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने आज अपने निवास कार्यालय में वर्चुअल माध्यम से प्रदेश में हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री कश्यप ने बताया कि वर्ष 2022 में प्रदेश में लगभग 240 हाथी थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर वर्ष 2026 में करीब 450 हो गई है। ये वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अंबिकापुर में संचालित गार्बेज कैफे के संचालक रितेश सैनी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 6 जून को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज श्रम विभाग द्वारा रायपुर में आयोजित मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट सूची में टॉप 10 में स्थान प्राप्त करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 22 छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत 2-2 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। इनमें कक्षा 10वीं के 9 और 12वीं के 13 विद्यार्थी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सम्मानित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि श्रमिकों के बच्चे केवल श्रमिक बनकर न रह जाएं, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, वैज्ञानिक और अन्य उच्च पदों पर पहुंचकर प्रदेश और देश की सेवा करें। मुख्य सचिव विकासशील ने आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टरों की बैठक लेकर उन्हें केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में शामिल हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ में नीट की परीक्षा 19 शहरों में होगी। इसके लिए 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। समारोह में विभिन्न संकायों के 9,000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। वहीं विभिन्न संकायों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि डिजिटल एडिक्शन आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। ये केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को डिजिटल एडिक्शन और पॉपकॉर्न मेंटल स्टेटस से बाहर निकालने की आवश्यकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन केवल उपाधि प्राप्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि समाज और मानवता के प्रति नए दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लेने का अवसर है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता, उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ की प्रगति और विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है।
1: आयुष विश्वविद्यालय में चौथा दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है।

0: आज जिन हमारे बेटा बेटियों को उपाधि और मेडल प्रदान किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है।
1: समारोह को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष देश के विकास, सुशासन और जन कल्याण के रहे हैं। इन वर्षों ने देश में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री साव आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आज से 21 जून तक देशभर में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क और हितग्राहियों से संवाद करेंगे। इसके अलावा प्रदर्शनी और विभिन्न जन जागरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश की शराब फैक्ट्रियों से निकल रहे जहरीले पानी से प्रदूषित हो रही नदियों को लेकर नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दो अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट कमिश्नर प्रदेश की 3 शराब डिस्टिलरी यूनिट्स का संयुक्त निरीक्षण करेंगे और आगामी 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में एक ही दिन में आयोजित होने जा रही 2 महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव से इनकार कर दिया है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है, इसलिए परीक्षार्थियों के पास आगामी परीक्षा में शामिल होने का विकल्प सुरक्षित है। ऐसे में पूरी परीक्षा प्रणाली के कार्यक्रम में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। रायगढ़ जिले की लैलुंगा पुलिस ने कटकलिया मार्ग पर 2 वाहनों से लगभग 300 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 चारपहिया वाहन और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर मध्य प्रदेश जा रहे थे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में नमी बढ़ी है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 4 जून को केरल पहुंच चुका है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम श्रम विभाग में भी लागू हो गई है। विभाग द्वारा सेवा प्रदाय करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही लोक प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं। और प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बार नवापारा परियोजना मंडल के बार परिक्षेत्र में दर्ज वन्य जीव अपराध के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के मेधावी बच्चों को आज किया सम्मानित। रायगढ़ पुलिस ने 2 वाहनों से करीब 1.5 करोड़ रुपए का गांजा बरामद कर 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: समाचार रायपुर केंद्र से विघट्स पर हम आकाश से बोल रहे हैं, शामिल को है। आइए सुनते हैं आप कार्यक्रम शेष भाग का प्रसारण।

0: हेलो, कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार, क्या
1: मैं आसाराम से अमल दत्तमदारी बात कर रहा हूँ जी।
0: करते हैं अमल जी?
1: मैं किसान का ही काम करते, खेती बाड़ी का के साथ जुड़े रहते हैं। घर में हमारा धान का खेती लगाया जाता है, चाय का खेती लगाया जाते हैं।
0: अच्छा, और जानना चाहेंगे आपके तरफ कौन से किस्म की धान की फसल ली जाती है?
1: हमारे यहाँ पर रंजीत और ज्यादा से रंजीत का ही फसल अच्छा होता है हमारे यहाँ पर।
0: जी, और आपने चाय के बागान की बात की तो असम, जब बात आती है असम की तो चाय बागान हम इमेजिन करने लग जाते हैं। तो क्या आपका खुद का चाय का बागान है? जी
1: हमारा घर में भी चाय का बागान है, 5 बीघा।
0: जी तो चाय की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, किस तरह से होती है?
1: चाय का खेती तो अच्छी होती है, जो पानी नहीं होता है तो चाय का खेती में थोड़ा प्रभाव पड़ता है, ज्यादा से फसल नहीं मिलता है,
0: अच्छा
1: ज्यादा नहीं निकलता है। और 2 महीने के बाद कुछ दवाई वगैरह लगाना पड़ता है थोड़ा। हमारा यहाँ पे थोड़ा ऑर्गेनिक जैसा किया जाता है हमारे घर में,
0: जी
1: जो ज्यादा दवाई और इसे ज्यादा यूज नहीं किया जाता है।
0: ऑर्गेनिक खेती करते हैं यानी कि आपके यहाँ पे?
1: जी
0: जी, आज पहली बार आपने फोन किया है लग रहा है।
1: जी जी जी पहली बार आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे ट्रैफिक को पार करके आपके पास पहुंच
0: क्या
1: गया।
0: बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है इस वक्त आपसे
1: जी
0: बातचीत करके। बताइएगा अपनी फरमाइश, कौन सा गाना सुनवा दी?
1: अच्छा, मेरा फरमाइश है आदमी फिल्म का कोई भी गाना सुना लीजिए।
0: आदमी फिल्म का कोई भी गाना?
1: जी अच्छा अच्छा कोई भी आपके पसंद कौन सा है इसके बारे में ये चला दीजिए।
0: जी, लेकिन ये आपके पसंद पर आधारित है ये कार्यक्रम, तो हम चाहेंगे कि
1: ठीक है,
0: आप।
1: मैं फिल्म का नाम बोल दिया तो
0: हाँ
1: आदमी फिल्म का सारे गाने मुझे पसंद है,
0: अच्छा
1: इसलिए कोई भी गाना चला सकता है।
0: जी, हम सुनवाएंगे आपको आपका पसंदीदा गाना। और 5 जून को मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस,
1: जी
0: आपके यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ चल रही है, क्या क्या करते हैं?
1: हमारे यहाँ पर तो तैयारी तो ऐसे हमारा जून में के पर्यावरण दिवस में हमारे यहाँ पे विभिन्न तरह की गत वगैरह लगाया जाता है।
0: अच्छा, तो पर्यावरण के प्रति सचेत रहने की जरूरत है आज हम सभी को।
1: जी
0: जी, लीजिए फिर सुनिए अपनी पसंद पर ये गाना। फोन इन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: भाई कोमल बिमल को ये गाना सुनाना चाहता हूँ।
0: अच्छा, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए फिर सुनिए आप सबकी पसंद पर ये गीत। फोन इन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: थैंक यू।
0: जी।

0: हेलो, कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
1: हाँ जी नमस्ते जी,
0: नमस्ते
1: हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, फिरवा बांधा भुवनेश्वर से। जी
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है योगेश जांगड़े जी, बहुत दिनों बाद फोन किया आपने।
1: सबको
0: जी
1: मौका मिलता है।
0: जी बिल्कुल, धन्यवाद कहेंगे इसके लिए हम उन सभी सुनने वालों की तरफ से। और आज है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस, तो इस दिवस पर आप क्या खास करते हैं?
1: हर साल पेड़ लगाते हैं और जो आज से 22-23 साल पहले जो पेड़ लगाए हैं वो आज बृहद रूप में हो गए हैं तालाब के पार में।
0: जी, देख कर कैसा लगता है आपको?
1: बहुत एक सुकून सा लगता है उसके छांव में बैठना।
0: क्या बात है जी, सभी जगह छांव हो तो राहत महसूस होती है, थोड़ी ठंडक भी मिलती है। और ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ती जा रही है, जरूरी है कि हम पौधरोपण करें, वृक्षों को ना काटें। जी, और बताइएगा अपनी फरमाइश।
1: फिल्म सिलसिला से सुनवा देंगे, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए।
0: लीजिए फिर पूरी कर रहे हैं आपकी ये फरमाइश। फोन इन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: आकाशवाणी F90।
1: मैं हूं हरीश और मैं आज आप सबके बीच अपनी खुशी साझा करने आया हूं। भारत में रेडियो प्रसारण को 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह सुनते ही मेरा मन गर्व से भर जाता है। हृदय की गहराइयों से आकाशवाणी रायगढ़ को बहुत बहुत बधाई। सोचिए, 90 साल पहले जब रेडियो ने पहली बार आवाज दी थी, तब न तो टेलीविजन था, न मोबाइल, न इंटरनेट। उस दिन से लेकर आज तक रेडियो ने हर सुबह की शुरुआत की, हर त्योहार की रौनक बढ़ाई, हर आपदा में राहत का पैगाम दिया। यह सिर्फ एक प्रसारण माध्यम नहीं, बल्कि हर भारतीय की जिंदगी का एक सच्चा साथी रहा है। 90 वर्ष यानी लगभग 90 बरस, इतने लंबे समय तक बिना किसी थके, बिना किसी रुके लोगों के बीच बने रहना, यह बहुत बड़ी बात है। कभी आजादी की लड़ाई के संदेश, कभी सीमा पार वीर जवानों की हौसला अफजाई, तो कभी छत्तीसगढ़ की माटी के लोकगीत। रेडियो ने हमें सिखाया कि सच्ची ताकत आवाज में होती है, दिखावे में नहीं। एक बार फिर से बधाई। जय हिंद।
0: हेलो, कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
2: जी मैम, हम बेमाजी असम से बोल रहे हैं, जुमे निकल सर बेमाजी सुंदरी।
0: आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, हम स्पष्ट रूप से आपको सुन नहीं पा रहे हैं। असम से आप बात कर रहे हैं, इतना समझ में आ रहा है।
2: जी, अभी
0: जी कहिए।
2: हेलो मैम।
0: जी हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए में। गाना सुनने के लिए फोन किया है आपने, अपना नाम बताइएगा जनाब। अच्छा, क्या करते हैं आप?
2: जी, मेरा दुकान है, मैं सिलाई का काम करता हूँ।
0: जी अच्छा, आपका काम काज कैसा चल रहा है?
2: जी मैम, अभी ठीक है, चल रहा है।
0: ठीक चल रहा है, बताइएगा अपनी फरमाइश, कौन सा गाना सुनवा दें आपके रेडियो सेट पर?
2: जी मैम, हमको सुनना है करण अर्जुन का जो भी एक गाना सुनाने से होगा।
0: कोई भी गाना? और आज का हमारा फोन इन प्रोग्राम बहुत स्पेशल है, विशेष फोन इन कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस बीच आपका फोन कॉल लग गया, हम आपसे यही जानना चाहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पर कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आप रोज ऐसा क्या करते हैं जिससे पर्यावरण की भलाई होती है, बताइएगा। अच्छा,
2: ये सब है मेरा काम
0: जी।
2: और आज पहली बार आप लोग का सिलेंडर फोन लगाए, आप बहुत अच्छा लगा, पहली बार मिला
0: जी,
2: इसमें बहुत अच्छा लग रहा है।
0: बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी खुशी हो रही है आपसे बातचीत करके। जी लीजिए, फिर पूरी हो रही है आपकी यह खूबसूरत सी फरमाइश। फोन इन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: जी।

0: तो श्रोताओ, ये तो रहा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारा आज का स्पेशल फोन इन कार्यक्रम। लीजिए फिर सुनिए, इस फोन इन प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं बस एक फोन कॉल के माध्यम से। श्रोताओ, फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है हर बुधवार शाम 4 बजे से। इसके लिए नोट करिएगा हमारा फोन नंबर है 2232 33, और रायगढ़ का STD कोड है 07762। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में होती है बहुत सारे लोगों की मेहनत, तो इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग रहा BS दुर्वे का, प्रस्तुति सहयोग रामविलास पटेल का, कार्यक्रम का संचालन किया मैंने यानी आपकी दोस्त और होस्ट रजनी ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रवि आनंद। और अब चलते चलते कुछ बातें। श्रोताओं, प्रकृति है तो भविष्य है, पर्यावरण है तो जीवन है। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ, सुरक्षित और हरित बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं, पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। और अब आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और सुनते रहिएगा आकाशवाणी रायगढ़।
1: अभी आप सुन रहे फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए के दूसरे और शेष भाग का प्रसारण। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम 7:20 होने को है। आज सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम में चौपाल सुनिए जम्मो संगी संगवारी मल्ला आप मन के संगवारी रामविलास पटेल के राम राम जय जुहार। संगवारी हो कैसे हावा जी आप हुई है मस्त और बिंदास भैया हो कैसे बिंदास कहा था भैया हो देखा आप धीरे धीरे धीरे धीरे सही मानसून के सक्रियता हो ही तो जो गर्मी आवे देहे हर जुड़ा ही कहा और अतका गर्मी अभी भी करा थे कि झन पूछो। लेकिन कुछ एक दिन में हमने देखा था कि 45-46 के डहर जो तापमान भागत रही से डिग्री ओवर थोड़कुन कमती हुई से और धीरे धीरे अब दिन जैसे ही जात जही जून के महीना यानी संगवारी हो मानसून के आगमन होना और थोड़कुन गर्मी ले राहत मिलना। लेकिन पानी ऐसे नहीं गिरे रज रजा के संगवारी हो कि हमार जो जमीन है भुइयाँ है तेहर कहना चाहिए गर्मी हर प्यास हर बुझ जही जुड़ा जही ऐसे नहीं आवे। अभी वर्षा हो ही फिर भी लेकिन संगवारी उमस बने रही तो ऐसने में हमार पशुपालन के काम के बात करथन तो ये महीना बहुत कुछ ला हमला ध्यान में रखना पड़ी। काबर रखना पड़ी काबर की तापमान कम रही लेकिन जो आर्द्रता रही और जो कहना चाहिए एक प्रकार से हमन कथन कि गर्मी रही तपीस रही या घमघमाही जोन ला कहथन ज़्यादा पसीना निसर थे यानी कि उमस जोन कहथन ओर बने रही तो ऐसने में हमारा आवास प्रबंधन के बात करथन तो हमार कोठा जोन है गाय गरुआ के छेरी भेड़ी के जो भी बाड़ा कथन या सेठ कथन कोठा कथन ओला बढ़िया रखना है ओकर खिड़की दरवाजा ला बढ़िया राखी काबर की ओमा टाट के बोरी लगाए हवन तो ओमा पानी हल्का फुल्का डालत रहो तो और संगवारी का हुई नमी बने रही। एकर अलावा अवैया समय में बरसात होने वाला है तो हमार जो कोठा के संगवारी छत हावे तेला भी अमला बढ़िया छज्जा ला करना पड़ी है कि नहीं अगर नहीं करबो तो वर्षा आई तो फिर दिक्कत हो जाएगी जी। तो कोठा के मरम्मत के संग संग ओकर छज्जा की भी व्यवस्था बढ़िया कर ले जो भी आप मन के हावे और संग में छायादार ठौर में बांधो अभी भी आप मन के पशु मला छायादार ठौर में चराए बर ले जाओ। अब छायादार ठौर में कैसे लेबो कहे भैया हो तो कहे का मतलब ये है जी कि बिहनिया जल्दी ले जाओ और जल्दी ले आनिया और संझा के 4 बजे के बाद जो है आप मन गाय गरु मला चरे बर ढीलिया ना तो कमती रहते तापमान है तो पशु मन बढ़िया चाव से खाते पीते। और का होते अभी हमर बहुता क्षेत्र मन में धान के जो फसल है जो रवि ग्रीष्म काल में लेत रही है रवि समय में लेत रही है वो मन कटाई कर दा रही है तो अभी का है गाय गरुआ मन उल्हुआ उल्हुआ चारा मिलत है कोई जगह पानी हर गिर दी से तो जो नराई रहते वहां से निसरत है हरा हरा तो संगवारी हो ओला भी चरते हैं और पार मेड़ला भी चरते हैं तो ऐसने में वो मतलब बिहनिया जल्दी लिया और जल्दी लिया नहीं तो बढ़िया रही है संझा के बेरा भी ले जाइए तो मझनिया के बेरा मन आराम कर डा रही जी। तो ये चीज ला ध्यान रखा और ठंडा पानी ला पिलावा। ठंडा पानी कैसे पिलावो तो संगवारी हो जब भी पशु आते तो ट्यूबवेल है या बोरिंग है जो भी आप मन के पास आवे संगवारी हो तो ओला कर ले का कर लिया आपन कि ओला आप मतलब करना है कि ओकर पानी पिलाना है गाय गरुआ मल्ला जैसे हमन पानी ले पीथन करसी के पीथन या कई प्रकार के हमन उपाय बनाथन जी वैसे ही हमारे पशु मन में भी बनाना पड़ी और 3-4 पैंत तो पानी जरूर पिलावा। संग में संतुलित आहार बहुत ही महत्वपूर्ण होते चाहे मनखे हो चाहे जानवर हो हर एक चीज में संतुलित आहार के अब्बड़ महत्व हावे। जीवन में भी संतुलन के महत्व हावे तो ऐसे पशुपालन में भी संतुलित आहार देना और पोषण आहार देना अब्बड़ जरूरी हावे। का है संगवारी हो पहली गाय घर पहली गांव में गाय गरुआ रही से या बैला रही से तो घर के मन नांगर फांदे के बाद गरुआ ला या बैला ला ढीले ना वहां से सीधा गांव आए तो वहां घर के माई लोगन मन जो कोटना रहे थे मैं नून ला दे रहे हैं पानी ले भर रहे हैं तो फिर पूरा पानी ले पी डा रहे हैं तो संगवारी हो नून दन तो एक प्रकार से खनिज तत्व तो मिले तो ऐसे खनिज मिश्रण भी हमला देना पड़ी और हरा चारा के प्रबंधन करना पड़ी। महीना भर के बाद बता था कि हरा चारा जो भी है जैसे नेपियर है मक्का है चरी है लोबिया है ये मतलब खिलावा और जोन मन हरा चारा नहीं खिला पा था जोन मन के पास हरा चारा के खेत नहीं हावे तो नेपियर अभी लगा सका था आप मन ऐसे हावे नेपियर एमपी चरी जिला संगवारी एक बार लगाई है तो बछर भर यानी कि आप मतलब लंबा समय तक चारा की उपलब्धता होते तो आप मन हरा चारा ला जरूर खिलावा एकर से पशु रही मस्त दुरुस्त तंदुरुस्त

और उत्पादन विधि भरपूर अब अतका चीज कर दरन संतुलित आहार खिला दरन हरा चारा ला दे दरन छायादार ठौर में बांध दरन और छैया छैया में चारा डारन और ठंडा पानी ला पिला दरन आवास प्रबंधन बढ़िया कर दरन अतका सब कर दरन लेकिन संगी हो पशु ला का होते संक्रामक रोग बीमारी के खतरा बने रहते एकर बर कहते हैं वर्षा ऋतु के पहली जो विभाग के डहार पशुपालन विभाग के डहार जो है संगवारी वो टीकाकरण अभियान चलाया जाते वो टीकाकरण अभियान में आप मन सक्रियता ला दिखावा और एक जिम्मेदार पशुपालक बने के आप मन कर्तव्य ला निभाव संगियो देखा टीकाकरण के बात करते ना तो ये में का है मुख्य रूप से गलघोटू लंगड़ी बुखार जोन होते मानसून आए के पहले एक ज़्यादातर प्रभाव देखे और मिलते और एक नियंत्रण पर भी निवारक टीका लगाए जाते तो जब भी गांव में हाका पारा जाते सूचना दिए जाते मुनादी कराया जाते तो गाय गरुआ मल झंड ढिलो पशु चिकित्सक ले संपर्क करो कतका बेरा आवा था साहब कहो या जल्दी आए बर कहा जल्दी ढिलना हवे आप मतलब चराए बर ले जाना है और तो मुख्य रूप से संग में भेड़ बकरी जोन होते संगवारियों ध्यान दिया भेड़ बकरी जोन होते ये मन में पीपीआर एक विशेष प्रकार से संगवारियों का टीका लगते बकरी मन में होए वाला जो महामारी हावे एक नियंत्रण पर पीपीआर के टीकाकरण होते तो आप मन भेड़ बकरी में टीकाकरण में पीपीआर के टीका जरूर लगावा तो संगवारियों पीपीआर के टीका कौन मा लगते तो भेड़ बकरी मन मा लगते तो आप मल्ला इला ध्यान रखना है और डी वार्मिंग जोन ला कहा जाते कृमिनाशक दवा खिलाए पिलाए जाते तो मौसम के अनुसार से 3 महीना में सिफारिश करते हैं विषय विशेषज्ञ मन जोन हर गाभिन हावे और जोन हर गाभिन नहीं हावे ओकर पर अलग अलग दवा आते तो आप मन संगवारी हो गाभिन हावे या नहीं हावे या छोट कुन हावे या बड़खा कुन हावे पीला हावे कि माई हावे आप मन देखा और डॉक्टर के सलाह से आप मन कृमिनाशक दवा जरूर खिलावा और पिलावा संग में बाह्य परजीवी होते जो लहामन किरनी कथन या जू कथन या मच्छर के प्रकोप ले बढ़ते जो संगवारी हो तो ऐसे में बाह्य परजीवी नियंत्रण पर चुपराय के भी आते इंजेक्शन भी आते और गोली भी आते तो आप मतलब आने ताने करना नहीं है डॉक्टर के सलाह से ही आप मतलब उपाय अपनाना है खिलाए वाला ला पिला दिया या कहने चुपराए वाला ला पिला दिया तो संगवारी गलत हो जाते तो आप मन हमेशा खिलाए वाला है चुपराए वाला है एमा आप मन विषय विशेषज्ञ से बिना पूछे ओकर बिना निर्देशन के बिना सोचे समझे झन खिलाहू पिलाहू नहीं तो अर्थ के अनर्थ हो सकते तो संगवारी हो ये चीज ला आप मन ध्यान में रखिया और जोन क्षेत्र में जैसे वर्षा के दिन आई तो पानी के भराव होए के समस्या होते या रही थे तो वहाँ के नाली मल्ला बढ़िया दुरुस्त कर लेवा ठिन्ना कर लेवा ताकि पानी के जमाव झन हो और अगर कहना चाहिए साफ सुथरा नहीं हावे जहाँ संक्रमण के खतरा दिखत है तो आप मन चूना के छिड़काव भी कर सका था कीटाणुला मारे बन तो ये सब ला करिया तो संगियो आप मन के पशु मस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रही और उत्पादन भी भरपूर आप मल्ला मिल ही तो संगवारी हो देखा ये रिसे आप मन पर आज के बात के विषय और आज के कृषक प्रश्न मंच में प्रश्न हावे आप मन पर पीपीआर के टीका कौन पशु मन में लगते संगवारी हो पीपीआर के टीका कौन पशु मन में लगाए जाते आप मन सही उत्तर लिख भेजिए कृषक प्रश्न मंच के रद्दा में और संगवारी हो देखा ये सब चीज तो बेसिक चीज है हम लोग ध्यान में रखना पड़ी पशुपालन कार्य है कृषि कार्य है उद्यानिकी कार्य है एक बारे में हमन कार्यक्रम में हर एक दिन अलग अलग विषय में जानकारी देथन तो पशुपालन जो काम है ये में एक चीज और आप मतलब ध्यान में रखना है कि प्राथमिक चिकित्सक जो पेटी होते या कीट होते एला भी रखना पड़ी काबर की वर्षा के दिन जैसे आई तो संगवारी हो का होते घाव जो हो जाते तो ओकर से जल्दी ओहर घाव हर जल्दी ठीक नहीं हो पाए तो एकर बर आप मतलब जो भी दवा है ओकर संग्रहण रखना चाहिए ताकि आप मन घरेलू अपन से स्वयं से एकर उपचार ट्रीटमेंट कर सको तो ये सब चीज ला आप मतलब ध्यान में रखना पड़ी तो संगवारी हो आज के बाद ला यही थिराबो और चलबो आज के हमर विशेष क्रम हमर लोकगीत के डहार।

पेड़ पौधा और रुख राहीला जगाव, पर्यावरण सुरक्षित बनाव, संगियो जल जंगल जमीन हावे जीवन के आधार, करना पड़ी एकर संगवारियों हमला सम्मान। आज हावे विश्व पर्यावरण दिवस और आज के दिन हमला प्रण करना है

कि हमर पर्यावरण ला हमर सुरक्षित बनाए मा हमर योगदान ला दी करके। तो संगियो हमर लोकगीत के क्रम मा पर्यावरण से जुड़े सुघर सुघर गीत ला आप मन पर लेके आए हमन। तो आवाज सबले पहले सुनबो संगवारी हो सुमधुर गीत ला मोर धरती रोवा थे रुक राही बिना। श्रवण कुमार साहू और संगवारी के गाय गीत हावे। तो कैसे ये गीत के माध्यम से बखान करत है आवाज सुनबो।

संगियो ये गीत ला सुनना चाह रही ने ग्राम खट्टी जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ ले सुभाष शर्मा छाया शर्मा मोती तिवारी हेमलता तिवारी भागवत देवांगन पदुम देवांगन कुमारी सुनैना पिंकी यश देवांगन प्रियांश तानवी नीता चंद्रबती युवराज गीता घासी मामा सलाम भाई रामचंद्र जी देवांगन समस्त देवांगन कुटुंब परिवार कोष्टा पारा जुड़वा चौक सरंग पाल ले दतरेंगी ले विश्राम यदु पार्वती यदु प्रतिमा रीना यदु के संगमा लक्ष्मीना यदु लालपुर ले लुकेश यदु और समीर यदु पहारा अहिवारा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ पोषण बंछोर चंद्र किरण प्रीति और छाया बंछोर गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्विनी वर्मा गणेश मिस्त्री देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ ले रुआ बांधा सनिश्चरी बाजार ले पसंद करता रही ने भिलाई ले सुशील जैन कल्पना जैन सैया जैन सौरभ जैन सौर्य जैन और सुभाष जैन बाजार पारा बेमे तराले भाई भरत लाल सिन्हा लव कुमार लक्की सिन्हा नर्मदा धाम सुरसुली ले कैलाश यादव सुरेश यादव डिकेन्द्र यादव योगेश यादव ग्राम बगबुड़वा पथरिया ले नरेंद्र नेताम कुसुम नेताम प्रोनिका प्रणामिका उत्कर्ष नेताम महादेवघाट अमलेश्वर ले डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश ठाकुर तारिणी ठाकुर सूरज ठाकुर ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर सुरेश कुमार सारथी भाई कमल कांत सारथी भाई ब्रिज कांत सारथी भेमे तराले मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटैली नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांता वर्मा सीमा शारदा दामिनी वर्मा यही गीतला पसंद कर रही ने महामाया पारा ग्राम दरचूराले फिरंता साहू दलवरिन साहू कामेश्वरी कुमारी प्रीतम कुमार साहू हटरी चौक बिलाई गल्ले खीक राम दिवांगन रेनू दिवांगन रजनी दिवांगन पिंकी दिवांगन लच्छन पुले सरोजनी रजक सीमा रजक कनक रजक पल्लवी रजक रश्मि साहू और गीता साहू आप सबों के पसंद न सुने बढ़िया गीतला आवा सुनी और एक ठन सुमधुर गीतला संगवारी हो जेकर बोल हावे संगवारी हो एक ठन रुख जगा के देखा हो तो संगवारी हो गीत लगाई ने पवन चंद्राकर तो आवा सुनी सुमधुर गीतला।

0: संगीओ अभी आप मन जो गीत सुनत रहा सुमधुर रही से धुर्रा बांधा भाटा पारा ले पसंद करता रही ने प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू और भूवेंद्र साहू, धरसीवाले छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा, अल्पना, अनुराधा यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले चन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव, लेवाई ले गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर ले विश्वनाथ साहू, रिंगनी ले दिनेश वर्मा, भिलाई ले मुकेश शर्मा, दतरेंगी ले भागवत वर्मा, गौशाला पारा रायगढ़ ले विनोद कुमार गुप्ता, रीना नेहा येशु और अंशु गुप्ता, बंगला मटिया बालोद ले शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशुमाला, आशुतोष अंगारे, ग्राम भारी टोला डाउंडी बालोद से नमित कुमार गौतम, पीहू प्रियंका, नीतू और मुरली गौतम। हमारे नियमित श्रोता हमें झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ ले लक्ष्मण वाधवानी, श्रीमती विमला वाधवानी, मास्टर हर्ष खुशी और सुमन वाधवानी, यही ले हमें कन्हैया लाल तीर्थानी, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ पसंद करता रही ने रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ पसंद करता राष्ट्रपाल गजबीय, तन्मय बेबी अनिस्का और राधिका गजबीय, बागबार बदरसी ले पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन, यवतमाल विदर्भ ले संतोष खड़से और विनोद खड़से, अटल रेडियो श्रोता संघ साकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ले नारायणलाल साहू, कुलवंती देवी साहू, नेहा देवी साहू, दिवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू और प्रणय कुमार साहू, संघ मार रुद्रांश प्रताप साहू, श्री सिंगिरी सी महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलरगांव ले मिथिलेश दिवांगन, मधु दिवांगन, हिमांशु और अंकित दिवांगन, आप सबो बढ़िया गीत ल सुना पवन चंद्राकर के स्वरमा, आवा संगवारी हो आप मल सुनाबो एक ठन औ सु मधुर गीत ला झन काटो रुक राहिला, संगवारी हो ये गीत हावे और ये गीत ला पसंद करता हमें गांव गणेश धाम परसोली पोस्ट खेरथा बाजार ले जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन भाई और मोतीन भाई मानिकपुरी, लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, रानी गांव नगरी जिला धमतरी ले खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा शुभम सेजल साहू, कन्यावाड़ा ले देवेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मीना सोनवानी, गीतिका गुड़िया, सोनम और शिवानी, करी बदले पुरुषोत्तम निर्मलकर, शारदा निर्मलकर, कुमारी लोचन विद्यार्थी, कुस्मिता निर्मलकर, गीतिका, नयागंज वार्ड भाटापारा छत्तीसगढ़ विष्णु साहू, पूरब साहू, वीरा साहू, हर्ष साहू, कुमकुम साहू, योगेश्वरी साहू, दतरंगी भाटापारा ले पसंद करता है हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, धमनी राजीम ले समेलाल धीवर, मुन्नी धीवर, गोविंद धीवर, ममता धीवर, कुणाल धीवर के संगमा इवांस, पहांदा पलारी ले छत्तीसगढ़ ले नीतीश कुमार दिवांगन, ईशांत लखनलाल, सावित्री बाई दिवांगन, ग्राम बाघामुड़ा कुमाखान छत्तीसगढ़ ले प्रज्ञानंद दिवांगन, नंदिनी दिवांगन, प्रकाश दिवांगन, गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी दिवांगन, मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू, सहसपुर ले छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू और द्रौपदी साहू, आवा संगी सुनी आप सबों के पसंद में ये गीत ला,
1: झन काटो एक रुख राईला, झन काटो एक रुख राईला, हो जाही

संगियो अवैया बेरा मा मानसून के सक्रियता हुई तो पेड़ पौधा ला लगाना पड़ी। तो संगियो ऐसने गीत हावे पंचराम मिर्जा और कुलवंतीन बाई के गाए गीत हावे पेड़ लगावागा पेड़ लगावागा पेड़ लगावा जी। ये सुगर गीत है और गीत ला पसंद करीन है कोरासी भाषा रायपुर छत्तीसगढ़ पवन कुमार साहू क्रांति देवी साहू पंकज साहू सुस्मिता साहू दीपिका साहू लुकाऊ पाली छतवन जिला बलौदा बाजार ले पुनीत राम सूर्यवंशी निर्मला सिंह निहारिका सिंह पंकज सिंह सूर्यवंशी भाटापारा ले दान सिंह रावत दानू पद्मिनी रावत नीरज और शुभम रावत सौरभ रावत संग महावे भाटापारा छत्तीसगढ़ हिमकेश्वर साहू करण राहुल साहू चंपा साहू धुर्राबांधा भाटापारा प्रमोद कुमार साहू और इमन के संग महावे नवीन कुमार साहू लोरमी उराई कछार ले रमेश पटेल राहुल पटेल देवराज पटेल जंगबाई पटेल रानू पटेल हेम वर्षा। यही गीत ला पसंद करी ने बाबा कोट रायगढ़ ले भाई शिव कुमार चौहान आशिक संक्रांति चौहान रितेश कुमार राजेश्वरी चौहान उत्कर्ष चौहान छत्तीसगढ़ मेघापराले मोहर राम पटेल मानुराम पटेल शोभा पटेल कुनाराम पटेल बिसाहू पटेल राधेश्याम पटेल भरत पटेल तुलाराम पटेल संग महावे

धनी बिना जग लागे सुनना संगवारी हो ये सुघर गीत है कविता वासनी के स्वर में गीत आवे और पसंद करता हावे मिठू मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ ले गेंदलाल श्रीवास कौशल श्रीवास बिहारी पटेल लक्ष्मी परेड लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई हटौत बाजार लाहौद ले कमलनाथ पटेल राकेश कुमार पटेल समीर पटेल राजकुमारी पटेल मुंगेली मेघापारा ले संतोषी पटेल दीपांजलि पटेल दिव्या पटेल जगबाई पटेल सीमा पटेल रीना पटेल रामकुशल पटेल संग महावे संगवारी हो मनोज साहू और टेक लाल पटेल यमन भी सुनना चाहिए गीत ला दतरेंगी ले भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा नानघाट कातल बोले भाग सिंह राजपूत भाग्यश्री टीकेश्वर ऋतु राजपूत ग्राम फुलझर घटारानी जिला गरिया बनले योगेश्वर साहू डुमेश्वरी साहू यामिनी साहू मुस्कान साहू हर्षिता साहू ग्राम बुड़गान छत्तीसगढ़ राम दुलारी प्रजापति राम शरण और चंद्रेश कुमार चंद्रकला शशिकांता प्रजापति पोटिया कला दुर्ग ले संजय साहू सुजाता साहू शशांक साहू और सीमा साहू आवा संगीत सुनी आप सबके पसंद मा धनी बिना जग लागे सुना ये सुघर गीत ला।

संगवारियों सुघर गीत और संगीत के क्रम यही थिरावत है। कार्यक्रम कैसे लागे जरूर आप मन साझा करिया। जोन मन के चिट्ठी पत्र ईमेल शामिल नहीं हुई से अवैया दिन में शामिल जरूर करबो और ऐसे ही माया दुलार आपन के बनाए रखिया। अब कार्यक्रम ले देवा विदा। आप मन के संगवारी राम विलास पटेल विदा। राम राम, जय जुहार।

0: Daily Law के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: तो संगवारी हो, हमारे लोकगीत में बढ़िया रुक राही से जुड़े गीत, पर्यावरण से जुड़े गीत ला सुनायन और आखिर में धनी बिना जग लागे सुना गीत ला सुनायन। तो संगी हो, आज रुक राही पर्यावरण से जुड़े गीत ला सुनाए के उद्देश्य ही रही से कि आज हमन मनाथन विश्व पर्यावरण दिवस। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस जोन हावे संगी हो, हमला सुरता करे के दिन है, जागरूक होए के दिन है कि पर्यावरण हमारे

0: पर काबर जरूरी हावे। हमर आसपास के आवरण साफ सुथरा संतुलित होना काबर जरूरी हावे। संगी हर एक बचर आज ही के दिन ला 5 जून के दिन ला हमन मनाथन विश्व पर्यावरण दिवस। और ये दिवस ला मनाए के शुरुआत बचर 1972 में किया गया से संयुक्त राष्ट्र के पहल में। संगी वो हमला शुद्ध हवा और पेड़ पौधा नहीं रही, साफ पानी नहीं रही, तो का हमर जिंदगानी जी सकथन, हमन जिंदगानी ला आगू बढ़ा सकथन? नहीं संगी हो। हमन देखथन कि तापमान बढ़ते तो हमला सुरता आते कि पेड़ पौधा ला हमन काटे हैं, या हमर मानव के डहाल कटाएगी से या काटेगी से या विकास के साथ विनाश भी हो से। तो संगी हो एकर से हमन देखथन तापमान बढ़ा थे और हमर पृथ्वी में हमन देखथन कि कचरा कैसे बढ़ा थे। तो कचरा जोन हावे संगी हो ये कचरा ला हमला व्यवस्थित करना पड़ी और कचरा के सदुपयोग करना पड़ी। तो संगी हो एकर बर कहा जाते संगवारी हो कि हमन अपन के रहन सहन मा जीवन मा कुछ चीज ला अपनाबो तो हमन पर्यावरण ला सुरक्षित बना सकत हन। जैसे संगवारी हो रिड्यूस कहा जाते यानी कम उपयोग, यानी जरूरत के अनुसार से ही अगर हमन सामान खरीदबो तो भी हमर प्लास्टिक है या पॉलीथीन के जो कचरा है ओला हमन रोक सकत हन। और एक चीज कहा जाते पुनः उपयोग रीयूज पर कहा जाते। तो जैसे बहुत सारा चीज है ओला फेंके के बजाय हमन दोबारा उपयोग में ला सकत हन, ये चीज ला अपना सकत हन। रिसाइकल है पुनर्चक्रण कर सकत हन, कागज है प्लास्टिक है या बहुत सारा चीज है ये ला हमन रिसाइकल करी या रिसाइकल पर कबाड़ी वाला ला दी या कबाड़ में दी। तो ऐसे अगर हमन करबो तो संगी हो हमन पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकत हन। सिंगल यूज जो प्लास्टिक हावे तेकर उपयोग ला हमला कमती करना पड़ी, प्लास्टिक ला ना कहना पड़ी। जल जंगल जमीन ला बचाना है तो संगवारी हो पानी के संरक्षण भी करना पड़ी। संग में हमर दायित्व होना चाहिए कि हमन पर्यावरण ला बचाए में हमन का कर सकत हन। तो ज़्यादा ले ज़्यादा पेड़ पौधा लगाई और कपड़ा या जूट के थैला के उपयोग करें और सिंगल यूज जो प्लास्टिक है ओकर से बची। तो ये सब चीज़ अपनाई, बिजली के बचत करी, अगर लखठा के ठौर ले जाना है क्षेत्र ले जाना है तो साइकिले चला के जाई। अभी हम 3 तारीख के मनाएं विश्व साइकिल दिवस। तो संगी हर चीज़ के महत्व हावे। तो पर्यावरण में हमला संतुलन बनाए रखे बर संगवारी हो हमला का करना पड़ी, पर्यावरण ला बचाना पड़ी, पेड़ पौधा लगाना पड़ी, एमा हमला जागरूक होना पड़ी और ये सब ला कर सकत हन। एकरे बर आज के गीत संगीत भी यहीं ले आधारित रही से। और संगी हो अवैया दिन में पेड़ पौधा लगाए के आज संकल्प लेवा, कम से कम फलदार पेड़ तो जरूर लगावा। अभी आमा कैसे मिला थे तो आमा के एक ठन तो पेड़ जरूर लगावा। तो संगी ये सब चीज़ ला आप मन करिया तो संगवारी हो पर्यावरण ला संतुलित बनाए में आप मन के महत्वपूर्ण योगदान हो सका थे। तो संगी हो आज हवे विश्व पर्यावरण दिवस, तो ऐसे में पर्यावरण संरक्षण में आम जन की सहभागिता का हो सकत है और वृक्षारोपण कैसे हमन कर सकत हन और वृक्षारोपण करके का लाभ ले सकत हन, ऐसे हमन कृषक शिक्षक से बात करत हन चूड़ामणि पटेल जोन मन हावे हिर्री के और विकास कुन बरम किला के कृषक। आवा सुनी उमन के बातचीत ला। संगवारी हो राम राम जय जोहार। आज हवे विश्व पर्यावरण दिवस। आज हमन देखा थन कि संगवारी हो वातावरण मा गर्मी बढ़ा थे, अचानक से तापमान मा वृद्धि हुआ थे और हमन देखा थन कि आज के हवा वायु जेला हमन सांस लेतन एयर भी आज प्रदूषित हुआ जाते, रुख राही हर नंदात जाते, पेड़ पौधा के संख्या घटत जाते। ऐसने में हमार वातावरण मा भी संगवारी हो संतुलन के अभाव देखे बर मिला थे। तो यही क्रम मा आज हवे विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये दिवस के ऊपर हम चर्चा करबो, संग में जानबो कि पर्यावरण संरक्षण काबर जरूरी है, हमन संरक्षण में का कर्तव्य निभा सकत हन, हमर का योगदान हो सकत है, ये सब के बारे में जानकारी देवर हमर बीच में उपस्थित हैं चूड़ामणि पटेल जी जोन मन एक शिक्षक हावे, ओमन की जुबानी हमन जानबो, हमर बीच में उपस्थित है। तो चूड़ामणि जी हमर डाले राम राम जय जोहार।
1: राम राम जय जोहार।
0: चूड़ामणि जी ये बताई है कि आज के दौर में हम देखा था पर्यावरण की स्थिति ला, तो पर्यावरण का हवे ला थोड़कुन बताई है।
1: हमारे चारों ओर के जो आवरण है वातावरण है पेड़ पौधा जीव जंतु है ये सब मिलके पर्यावरण बनते जी।
0: हाँ।
1: लेकिन पर्यावरण हर अब दिनों दिन प्रदूषित हो जाते और उकर कई कारण है, पर्यावरण प्रदूषण ला रोकना भी हमला पड़ी।
0: हाँ।
1: हमार वातावरण ही सही रही तो भी पर्यावरण सुचारू रूप से संचालित हुई, तो एक खातिर बार हमला सबला जागरूक करे के खातिर बार 5 जून ला विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते जी।
2: अच्छा,
1: हम संकल्प करतन की पेड़ पौधा लगाबो कके।
2: अच्छा, तो ये दिवस ला मनाए के शुरुआत कब ले होई से?
1: यह 1973 में हुई से जी, और 5 जून 1973 ले मनाए के एकर चालू हुई से।
2: हाँ,
1: और एकर उद्देश्य लोगन मन ला पर्यावरण के प्रति जागरूक करना।
2: हाँ,
1: और प्रकृति के लिए रक्षा करे के प्रेरित करे बर।
2: अच्छा,
1: लागू हुई है जी,
2: ये उद्देश्य है का?
1: हाँ जी।
2: अच्छा, तो पर्यावरण में हमन आजकल जो समस्या देखा था, का कारण से होते
1: पर्यावरण के प्रदूषण के बर तो कई समस्या है और उत्तरदायी है जी। तो जैसे आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण बर एक बड़े चुनौती है, खबर कारखाने के धुआं मन निकलत है, वाहन ले गैस निकलत है,
2: वाहन के जो धुआं है।
1: हाँ,
2: तो एक बार सर्विसिंग समय में नहीं कराए तो ये भी समस्या होते, और ये सब समस्या ला आम जन नजरअंदाज करते।
1: हाँ,
2: लेकिन एक एक बूंद से घड़ा भरते कहते, तो ऐसे एक एक आदमी की जन जागरूकता से भी ये बढ़ सकते है। हाँ, ना
1: प्लास्टिक के हम दुरुपयोग करते हम समझा।
2: हाँ,
1: और जंगल के कटाई कर दी थे,
2: पेड़ पौधा
1: पौधा के कटाई हो जाते, जल प्रदूषण के भी कई प्रकार के हमारे नुकसान होते।
2: हाँ,
1: और ग्लोबल वार्मिंग बढ़े के कारण जलवायु में भी परिवर्तन।
2: हाँ,
1: और कई प्रकार के बीमारी हो जाते जी।
2: हाँ,
1: गर्मी लगातार बढ़े थे।
2: हाँ,
1: और आप मन जाना था कि अभी तो बहुत डिग्री तक गर्मी चला थे, 45 डिग्री पार कर दे।
2: हाँ,
1: ऐसा प्रकार के
2: ये साल अगर बात करबे तो 45 डिग्री पार भी कर दे तापमान है ना।
1: हाँ जी,
2: तो ऐसे में अगर हम बात करते तो पर्यावरण संरक्षण पर हमार का पहल हो सकते, हम का करबो?
1: देखो तो पर्यावरण के संरक्षण के कई प्रकार के अनेक उपाय है, तो उन्हें हम सबला कई कदम उठाना पड़ेगी। जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाना पड़े।
2: अच्छा, का आप मन पेड़ लगा था?
1: हाँ, हम हर साल पेड़ लगा था, और बाबूजी रहिस तो भी बहुत पेड़ लगा दे।
2: अच्छा, का पेड़ लगाई है?
1: लगभग सागुन के 50 से 100 पेड़ तक लगा दिन है।
2: अच्छा, तो कैसे लगाई है और आप मन कैसे लगा था?
1: अब ओला कटिंग करके उकर लगा थन।
2: अच्छा,
1: या तो हाँ नर्सरी फार्म ले भी ले आन थन।
2: हाँ, हाँ।
1: अपन खेत के मेड़ मेड़ मन में लगा थन जी।
2: अच्छा, तो अभी कतका बच्चर के हो गए लगाई है?
1: हर कम से कम 15 बरस ले अधिक होगी से ना, बहुत मन पौधा बड़े बड़े पौधा बन गई।
2: तो कर जैसे प्रति पौधा के हिसाब से देखा जाए तो कतका बिक्री हो सकत है?
1: कम से कम एक ठो पौधा 5,000 से 10,000 तक बनते जी, जब पक जाते तो।
2: अच्छा अच्छा, तो पेड़ पौधा लगाए के ही लाभ है का?
1: हाँ,
2: तो भविष्य सुरक्षित रहे थे।
1: हाँ जी।
2: हाँ, और कुछ उपाय है जिला हम अपना सकत हन?
1: हाँ जी, प्लास्टिक के उपयोग कम करके भी हम प्रदूषण से बच सकत हन।
2: कैसे करबो ओकर उपयोग कम करे बर? प्लास्टिक के उपयोग ला हम
1: ओकर बर हम कपड़ा के थैला के भी उपयोग कर सकत हन,
2: बाजार जाइए
1: लेके जाए। प्लास्टिक ला इधर उधर फेंक देते हैं तो जला देते हैं तो भी प्रदूषण फैलाते जी। तो ओकर जगह में हम जूट के थैला या कपड़ा के थैला का उपयोग करना चाहिए।
2: हाँ हाँ,
1: पानी और बिजली के भी बचत हमन करना चाहिए।
2: हाँ,
1: स्वच्छता ला बनाए रखबो तो भी हमर जो प्रदूषण है ओकर से हम बच सकत हन।
2: पानी जैसे बाद निकले से तो गर्मी के दिन में पानी के समस्या भयंकर हो जाते, तो पानी के समस्या ला हमन दूरिया करे बर हमन का कर सकत हन?
1: अब कथन जी, जल ही जीवन है, जल ही हमारे जीवन के आधार है, पानी के आधार है। तो जहाँ तक हो सके हम सुरक्षित रखना चाहिए, ओकर बर हम नल हमेशा बंद करके रखना चाहिए, नल के टोटी ला यानी जगह जगह में स्टाफ डैम बना करके रखना चाहिए, बड़े बड़े नदी नाला में बैराज बना के पानी के स्टोरेज करके रखबो, तब इस समस्या ले हम निजात पा सकत हन।
2: और गाँव घर में हम प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो घर के पानी है, जैसे किचन के पानी है, जो बाहर जाते पानी वाला हम गार्डनिंग में उपयोग करी।
1: हाँ,
2: है ना, एक रोटेशन करके करबो तो ही हमारे ये समस्या का समाधान हो सका।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: अच्छा,
1: और जो हर प्रदूषण फैलात है वो चीज के उपयोग हमला बिल्कुल कम करना है।
2: हाँ,
1: और उकर बाद में लोगों मतलब पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कराना है।
2: हाँ,
1: तभी इले हम निजात पा सकत हन जी पर्यावरण के प्रदूषण ले।
2: अच्छा अच्छा, जैव विविधता ला बनाए रखे बर सबो जीव जंतु पेड़ पौधा के समन्वय होना जरूरी है।
1: हाँ जी।
2: और एक के ऊपर हस्तक्षेप मतलब पूरा प्रकृति के ऊपर हस्तक्षेप
1: है ना। हाँ जी।
2: और जैसे देखा जाए तो कृषक भी इनका संरक्षण में पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकत है।
1: हाँ जी, हम गोबर के खाद और जैविक खाद के उपयोग अधिक से अधिक करबो तो निश्चित रूप से हमारे फसल भी अच्छा हुई और पर्यावरण के प्रदूषण से भी लिए हमन बच सकत हन जी।
2: अच्छा गाय पालन कहा तो
1: गाय ला गौ माता कथन तो गौ माता के पालन होना चाहिए जी। अब दिनों दिन देखा में मिलत है कि गौ पालन भी गांव में लोगन मन अब नहीं कर पात है नहीं, तो गौ के पालन होना चाहिए जी, तभी हमन ला खाद मिली।
2: गोरस गौ मूत्र और गोबर
1: हाँ
2: तीनों के उपयोग होते
1: हाँ जी
2: है ना। गोरस के हमन दही पानी में उपयोग करते, कीटनाशक के रूप में कीट नियंत्रण में उपयोग किए जाते
1: जी
2: है ना। गोरस ला पूजा पाठ में और पौष्टिक आहार के रूप में भी देखा जाते
1: है।
2: गोबर हमारे भूया पर पौष्टिक आहार होते
1: है,
2: तो ये सब चीज अगर हम करबो तो हमारे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होएगा।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, हमला खाद के उपयोग करके जैविक खाद के ही उपयोग करना चाहिए।
2: अच्छा आखिर में माला आखिर में पटेल जी और का कहना चाहिए संगीत जाहरी अमल?
1: मैं ये कहना चाहा जी कि ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून के ये हर हमर बर विशेष महत्व के और प्रकृति के महत्व ला भी समझते हुए हमला ये याद दिलाना पड़ी कि मनुष्य ला और जीव जंतु सब पर्यावरण के रक्षा करे बर हमन कठोर कदम उठाबो, अपन कर्तव्य के पालन करबो, स्वच्छ और हरित पर्यावरण के बर उज्जवल भविष्य के कामना करबो, हमन मिल के पर्यावरण बचाए के संकल्प लेबो, अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाबो, तभी हमन ये पर्यावरण प्रदूषण के से निजात पा सकत हन। और लोगन मन ला भी मैं यही कहना चाहा कि हमन पेड़ पौधा ला अपन बच्चा के समान पालन, जैसे हमन अपन बच्चा ला लालन पालन करथन वैसे पेड़ के रखवाली करबो, तभी हमन इस समस्या ले निजात पाबो। और सब लम्बर सलाह है कि आप मन भी पेड़ पौधा बहुत से बहुत संख्या में लगावा।
2: बहुत सुगर जानकारी देवा चूड़ामणि पटेल जी कर बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जय जोहर।
1: जय जोहर जी।
3: नमस्कार, मैं नवीन देव हिमधर काशीराम चौक रायगढ़ से हूँ और मेरी ओर से समस्त आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने का यह स्वर्णिम अवसर हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण है। आकाशवाणी ने दशकों से जन जन तक ज्ञान, संगीत, समाचार और संस्कृति की पहुँच बनाई है। रायगढ़ जैसे छोटे से शहर को भी इस राष्ट्रीय माध्यम से जुड़ने का मौका मिला, यह हमारे लिए संतोष की बात है। हम इस यात्रा के प्रति कृतज्ञ हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमन है उन सभी रेडियो कर्मियों का जिनकी मेहनत से यह सफर सफल हो पाया है।

तो संगवारी हो देखा अब चला हमार नसीहत के डहा जाबो, तू सुरक्षित भंडारण कर अनाज को कीटों एवं चूहों से बचाएं। संगियों देखा किसान जतका मेहनत करते ओकर परिश्रम होते अथाह होते, सिर्फ उत्पादन करना नहीं हो बल्कि संगवारी उत्पादन के बाद कीड़ा मकोड़ा और मूसुआ ले बचाना यानी ओकर से बचाना बहुत जरूरी है। संगी हो जैसे ही मानसून के सक्रियता होते बरसात के अवैया शुरू होते बरसात अवैया शुरू होते नमी बढ़ते उमस बढ़ते ऐसने में कीड़ा मकोड़ा और जो घून सुंडी रहते चूहा मन के प्रकोप हर बाढ़े लागते। और ऐसने होते संगवारी हो गर्मी के समय की खेती कि सरकार के डाले जैसे धान के कहना चाहिए क्रय नहीं किया जाए मंडी में, तो ऐसने स्थिति में धान ला रखना पड़ते, बहुत सारा चीज़ हमार जो उत्पादित होते एकर भंडारण करना पड़ते और एकर सुरक्षित भंडारण नहीं करबो तो संगवारी हो मूसुआ खा दी ही जी। तो एकर पर हमला का करना है सबले बढ़िया तरीका ये हावे कि भंडारण के पहली बढ़िया सूखो ली धान हो या गेहूँ या अन्य चीज़ हो ये मतलब बढ़िया से अलट पलट के बढ़िया सुखा लेना चाहिए और सुखाए के बाद उमर 10-12% जो है नमी रहे एकरले ज़्यादा झन हो इला ध्यान में रखना चाहिए। और दांत में चापथन न कट करते तो समझ जाओ कि हर सही हावे। कचरा जोन होते ओकर डंडी रहते तो वो सब चीज़ा अलग करना बहुत जरूरी है, छान के अलग कर वही ले पनप थे तो ये सब चीज़ा भी ध्यान रखना है। और जो भी बोरा हावे या कहना चाहिए संगवारी ठौर हावे कोठी आजकल तो नदा के लेकिन बोरा हर जरूर हावे या राखे के ठौर हावे तो वहाँ आप मतलब पुराना बोरी हावे या जूट के बोरी हावे दोबारा उपयोग में लावा था तो संगवारी वाला बढ़िया से रख लेवा, बढ़िया से रख लेवा यानी वाला झर्रा के बढ़िया घाम में सुखा देवा ओकर बाद रखाओ। या जोन ठौर में आप मन रखा था वह तो वहाँ सीमेंट ले वाला बढ़िया बंद कर देवा जो दरार हावे तेला। और जो मचान बनाया है थोड़ा थोरकुन वाला ऊपर करके रखा ताकि मूसुआ के प्रकोप कम हो और दीवार से सटे हुए झन हो। ये सब ला करिया तो संगवारी हो निश्चित तौर से आप मन के जो सुरक्षित है अनाज है और सुरक्षित रह सकत है। संग में दीवा जो मूसुआ होते कर वो पिंजरा लगा सका था तो ये सब चीज़ करके आप मन भंडारण करो तेकर से आप मन के उत्पादन के बढ़िया लाभ मिली। तो संगियों चला आगू बढ़िया और सुनिए एक टन संदेश ला।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: संगियो देखा, फसल उत्पादन में आजकल नैनो उर्वरक के उपयोग बढ़ा थे। दानादार यूरिया है, DAP है, ये मन की तुलना में जो नैनो उर्वरक हावे एकर मांग भी आज बढ़ा थे। किसान मन भी अपन जुबानी साझा करते हैं, अपन के विचार ल कि कैसे ओमन ओकर उपयोग करके आमदनी ल बढ़ाते हैं, लागत लघटा के आमदनी ल बढ़ाते हैं। कैसे होते हैं संगवारियों, तरल नैनो यूरिया एक बोरा लेते हैं तो 45 से 50 किलो के बोरा होते और एक टन आधा लीटर के कहना चाहिए डब्बा में आ जाते। तो एकर से का है संगवारी हो, पोषक तत्वों के उपयोग दक्षता में वृद्धि होते, यानी कि जो पारंपरिक यूरिया के हम उपयोग करते हैं खेत में डालते हैं तो ओकर ले 30 से 50% हिस्सा पौधा ओला का करना चाहिए प्राप्त नहीं कर पाए, बाकी सब का हो जाते संगवारी उड़िया जाते या पानी संग में बहा जाते, यानी 50% ला वह उपयोग में कर पाते, बाकी एति ओती करके भाग जाते। तो संगी हो एकर बर हमन नैनो उर्वरक के उपयोग करते हैं तो 85 से 90% तक के ओकर लाभ पौधा ला मिलते। तो संगवारी हो एयर भी बढ़िया चीज है। पत्तर डाल ले अगर बात करते तो सीधा अवशोषण होते, पत्ती के माध्यम से अगर छिड़काव करते तो पत्ता ओला अवशोषित करते और अपन के क्रिया ला तेजी से बढ़ाते। काबर की पत्ता में जो छोटे छोटे छिद्र रहते रंध्र रहते वो नैनो कण ला बढ़िया सोख लेते, तो एकर से भी बढ़िया लाभ होते। संग में संगवारी हो फसल की गुणवत्ता और पैदावार में भी वृद्धि देखा गई से वानस्पतिक वृद्धि भी होते, फसल के कल्ला भी ज़्यादा फूटते और दाना के आकार और चमक और वजन में भी बढ़ोतरी होते और पैदावार में भी 8 से 15% तक वृद्धि देखा गई से और एकर भंडारण परिवहन भी आसानी हावे और पर्यावरण के अनुकूल हावे। तो अतका जब लाभ हावे तो हमला फसल उत्पादन में नैनो उर्वरक के उपयोग ला करना पड़ी, ताकि संगवारियों हमार जो खेत है भुइया है वह सुरक्षित रहे, मस्त रहे और हमला उत्पादन लगातार देत रहे। संग में आज के दौर में अगर हम देखो तो मोटापा बढ़त जाते, तो मोटापा काबर बढ़त है, भाग दौड़ के जिंदगानी हावे और सब आराम पस्त जीवन शैली जीना चाहते हैं और आज के दौर में देखो तो एक ठन एक घर के समस्या नहीं, समाज के समस्या नहीं, बल्कि विश्व के समस्या बन गए मोटापा। हर वजन बढ़िस मतलब कई प्रकार के रोग बीमारी, चाहे उच्च रक्तचाप के कारण, मधुमेह के कारण, चाहे और अन्य जो समस्या हृदय से संबंधी कारण या जोड़ में या दर्द के बात करें, ऐसे कई प्रकार के समस्या बढ़त जाते। तो एकर बर आप मन हम कहना चाहबो संगवारी हो योग अपनावा और निरोग रहा, तो ये तो सही बात है, लेकिन एकर अलावा आप मन की दिनचर्या ला भी बढ़िया रखना पड़ी। काम के दरमियान आप मन निश्चित समय अंतराल लेवा अपन के शरीर पर, अपन के देहे पर देवा। संग में अगर गांव घर या जहां भी आप मन रहा था सीढ़ी हावे तो सीढ़ी में चढ़ाओ, एकर से भी आप मन के हाथ पैर के कसरत हो जाते और आस पास के ठाव ला जावा था तो रेंगत भी जा सका था, या आप मन साइकिल चला के भी आइह जइह तो संगवारियों ओकर से भी आप मन के देह के कसरत हो जाते। तो ये सब चीज़ ला करना पड़ी। खान पान में जो मैदा है या चीनी से संबंधित बने जीनी से ओमन के डाइट ला थोड़कून कम करना पड़ी आप मन ला, और फाइबर और प्रोटीन के मात्रा ला बढ़ाना पड़ी। और संग में संगवारी हो आप मन अगर नियमित रूप से व्यायाम योग ये ला अपनाइह तो एकर से भी आप मन के शरीर स्वस्थ और मस्त रही। संग में खेत बचाओ अभियान भी चलत है, तो आप मन ला मन कहना चाहबो कि अभियान से जुड़ाओ। 4 जून 2026 के स्थिति में ये अभियान में 9.42 लाख ले ज़्यादा किसान ये में जुड़ चुकी हैं। तो संगी हो ये अभियान चलत है, तो आप मन भी अभियान में जुड़ाओ और खेत ला बचाओ। अब जाए के बेरा हो गए तो आप मन के संगवारी रामविलास पटेल ला देवा विदा। राम राम, जय जुहार।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाई का कार्यक्रम चौपाल, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं उदित नारायण की आवाज़ में फैज़ अनवर के लिखे इस गीत को। संगीत निखिल विनय का है।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम। और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान, ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आइए पहले हम आपको सुनवाते हैं फिल्म ये है बम्बई मेरी जान फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज़ में।

0: आकाशवाणी F90।
1: नमस्कार, मैं हूँ कुंती साहू रायगढ़ शहर से। आज मैं बहुत खुशी और गर्व के साथ आकाशवाणी रायगढ़ को भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। मुझे याद है मेरी मिनी उम्र में जब घर में रेडियो लगा था तो पूरा परिवार शाम को उसके आसपास इकट्ठा हो जाता था। चाहे समाचार हो, फिल्मी गीत हो या किसी नाटक का प्रसारण, रेडियो हमारी दुनिया की खिड़की था। उसने हमें देश और दुनिया से जोड़े रखा। 90 साल यह समय किसी एक पीढ़ी का नहीं बल्कि चार पीढ़ियों का साथ है। आज तकनीक ने कई रूप ले लिए, लेकिन रेडियो की जो निश्चल अपनत्व है वह कहीं नहीं मिलता। रेडियो ने हमारी छत्तीसगढ़ी बोली और लोकगीतों को भी वह मुकाम दिलाया जिसके वे हकदार थे। मैं कुंती साहू रायगढ़ की ओर से उन सभी स्त्री पुरुषों को नमन करती हूँ जिन्होंने इस माध्यम को दशकों तक जीवित रखा। हर उद्योग शिक्षा, हर तकनीशियन, हर उस कलाकार को धन्यवाद जिनकी आवाज हमारे घरों तक पहुंची। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जख्मी का ये गीत। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम में भी समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत

0: सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर

गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
5: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो

0: इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9.

इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ें। फिल्म का नाम है कोहिनूर।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म काला बाजार से लिया है। गायक स्वर मोहम्मद रफी का है, गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत एसडी बर्मन का है।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है चौदहवीं का चांद और स्वर मोहम्मद रफी का, शब्दकार शकील बदायूनी है और संगीतकार रवि हैं।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। फिल्म अनाड़ी का दो गाना सुनिए, स्वर लता मंगेशकर और मुकेश के, गीतकार हजरत जयपुरी हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर और मुकेश को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था अनाड़ी। और आइए अब सुनते हैं फिल्म जिद्दी का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। इसे प्रेम धवन ने लिखा है और संगीत में ढाला है खेमचंद प्रकाश ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था जिद्दी। इसे प्रेम धवन ने लिखा था और धुन बनाई थी खेमचंद प्रकाश ने। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हेमलता की आवाजें। फिल्म का नाम है जीने की राह। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

थीम पर विशेष कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आज विविध संगीत कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में आइए आज हम सुनते हैं भूपेंद्र सिंह की गाई कुछ खूबसूरत गजलों को। तो करते हैं शुरुआत भूपेंद्र सिंह की इस गजल के साथ। कई लिखी गजल है संगीत

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई

सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्टकार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।

मिताली सिंह की आवाज में भी आप सुन रहे थे इस गजल को एफएम 107 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनाते हैं आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को। फिल्म गीत है

सुरेश पाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में भी आप सुन रहे थे फिल्म धनवान का ये गीत। सर गीत हृदयनाथ मंगेशकर का था।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे, उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो, ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में, तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है, यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है, उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था, कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था, जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
0: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

0: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

की आवाज में इस फिल्म के गीत को कर ये किशन का संगीत और अंतिम गीत हमारा से मंगेशकर की रचना को संगीत से संवारा है एस डी बर्मन ने।

मंगेशकर की आवाजों में गाया फिल्म स्पिन का गीत बर्मन ने। इस गीत के साथ ही फिल्म गीतों कार्यक्रम रजनीगंधा भी समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है।

0: रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
1: मैं कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम चल रहा है भोर सुहानी। कोयल की मधुर कूक प्रकृति का संदेश है कि अपने जीवन में प्रेम, सौहार्द और सकारात्मकता के स्वर खोलिए। मीठे बोल केवल दूसरों का ही नहीं, अपना जीवन भी सुंदर बना देते हैं।